पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गात मत शब्दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए पौड़ी। जिस दै चित वसया मेरा स्वामी, तिसनों क्यों अंदेसा किसै गल्लै दा लोड़ी है। हर सुख दाता सबना गल्ला का, तिसनों त्याई दया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है। जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है। हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे दिठै। जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ। जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए। जिन हर हर मन वसाया, महला तीजा सारस ना जल जाओ। जिन हर का नाउ वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै। हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत। हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे। जित पावे तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे। हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस। कर वेखै चलत सुभाए,

आई बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञान अंधेरा जाई सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज नानक सरन करतार की करता राखै लाज पौड़ी।

दिन रह सदा गुण गाई, बिन कर्म किन ना पायु, भौंक मोए बिल लाई। गुर कै शब्द मन तन भिजै,

पुराण सब शास्त्र आप कथ आप भीजै आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै आप परविरत आप निर्विरति आपे अकथ कथीजै आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वर्तीजै आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छाड तू पहो कर झल गवाए गुर कै भै केते निस्तरे भै विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम करो।

आप खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदा।

लाती जा। एक सतगुर की सेवा करह क्या करी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी

हर सिउ प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया। आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया। आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

पावै, आपे सतगुर मेल सुख देवै, अपना सेवक आप हर पावै, अपनिया सेवका की आप पैज रखै, अपनिया भगता की पैरी पावै, धर्म राय है हर का किया, हर जन सेवक नेड़ ना आवै, जो हर का प्यार

तृप्त भई हऊ तिन बलिहारे जाऊ। मैं की नजर न आव ही वसह हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया

जो सह कंठ ना लगियां जलन से बाहड़िया सब सहियां सहुरावन गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तैं सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मन मुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए दूजे भाई कुरूपी दुख पाव है आगे जाए गुणवंती नित गुण रवे हिरदय नाम वसाए अवगुणवंती कामणी दुख लागे बिल लाए सब

मन आए परमे भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौ क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पेर गुणवंता हौ औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौ जाए पुछा अपने सतगुर गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए हौ सब वेस करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पा

फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागण जिन फिर रावड़ा सच सवरा हौ जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों फिर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी फिर साचै मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का इत मार्ग भैने मिलिया आप नड़ा प्रभ नदर कर देखै नानक जोत जोती रलिया जो हर

आप वखाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावै सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाउ लाख भगत जाको आराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा कट कट वस है जान है थोरा

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

जाति जिसह जनाब हो तिनह तुम जाति सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

अंतर भूख न उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन धीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

सार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। हों पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर किते ना लेखा। यो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिन आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हम वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके तुआ सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुलना समसरे।

आपे नदर करे वड़ा हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखान सब उपाय आप आपे सर्ब समान सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे पिकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ पिया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहे माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहे एक मूल

किनारे सत्या शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सत्या पाए प्यारी कंत सवारी हार हर स्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुरु कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहया भरपूरे राम फिर रव रहया भरपूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही भरपूरे नानक कामन सा फिर भावै।

नानक हर की भगत नराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम ध्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

साच्या शब्द लिव लाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रहाए। दूजे पाए परम भगुती, मन मुख मोही जम काल। कह नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच संभाल। मन मेरिया अंतर तेरे निदान है, बाहर वस्त ना पाल। जो भावे सो पुंच तू, गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सिखाई। मनमुख अंदले ज्ञान विहूणे,

अपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे कर्ण पुकारा राम उभे कर्ण पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काड पीयै पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागै रसना राम रबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हऊ मैं मैल परीजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा बिष्टा माही समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोए ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूरख कूक मोए गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुध न काई राम गुरमुख इहो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे भंडारा गुरमुख होवे सोई बूजै सच सवारण हारा आपे मेले सो हर मिलै होर कहना किछु ना जाई नानक बिन नावै भरम भलाया।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणे, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है,

सेवा लागे सेवड़ भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई बड़ा हंस महला चौथा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर

आए जप हर हर नाम भिक्षे राम जप हर हर नाम कमल पर गास्ते हर नाम नमंग निद पाई हूं मैं रोग गया दुख लाथा हर सहज समाद लगाई हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसते हों जीवा सतगुर देख सरसे कोई आण मलावे मेरा सतगुर पूरा राम हों मन तन देवा तिस काट शरीर राम हों मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाते देहो सतगुर चरण हम धूरा।

देव हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख भरम भउ भागा सेवक भाई मिले वडभागी जिन गुर चरनी मन लागा कहो नानक हरे आप मलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई बड़हंस महला चौथा हौ गुर बिन खरी निमाणी राम जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया जिस कारण हौ ढूंढ टुनेंदी सो सज्जन हर घर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हौ गुर बिन खरी निमाणी जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया

है तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाए किस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे श्रद्धा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम जो हर प्रभ भावे सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियानप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई राम हर नाम देवै मेरा अंत सखाई राम हर हर नाम मेरा अंत सखाई।

सतगुरु पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जहां हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करह बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिनसे हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी अरादया तिनके दुख पाप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिनसे हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भय शरीरा अनदिन सहज समाद हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु हो कृपा।

आया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारी हर धारहु हर धारहु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुज चंगा राम चढ़ लंगा जी विखम भोए अंगा राम विखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराय हन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो।

अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन सुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सब आसै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई बड़ा।

राम जाड़ हर हर नाम रतन्ना राम जाड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सुख घने गुर शब्द पाया हर नाम त्याया बड़भागी हर रंग हर बाणी हर मिले स्वामी अंतर जामी हर नव तन हर नव रंगिया नानक बखाने नाम जाने हर नाम हर प्रभ मंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सो है हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह घोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाय हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस महा

0: तुद सलाही।
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया,
0: बख्श लिया खिन माही। नौ निद पाई बजी वधाई, वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया। मेरे लाथे जी सगल वसूरे, सलोक क्या सुनेंदो कूड़, वंजन पवन चलारिया। नानक सुनियर ते परवान, जो सुनेंदे सच धनी चंत, तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम। ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम, ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आई। भै बोहित सागर प्रभ चरणा, केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर, तिनका लेखा ना गणिया। कहो नानक तिन कोल कमाई, जिन प्रभ श्रवणी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ, प्यास ना बुझै मूह घणी, नानक से अखड़िया बयानी।

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता।

हा पूर्व कमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदे लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इतै तंदा कूड़ा चार देहा आगै सर पर जाना आगै सर पर जाना ज्यो मेहमाना काहे गर्ब कीजै जित सेवै दरगाह सुख पाइय नाम तिसै कालीजै आगै हुक्म ना।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उथे जाना, जिसका किया तिनी ही लिया, हुआ तिसे का पाना, जो तिन कर

हारेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखे नानक सहज सुपहाय वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवा।

दाता शब्द रंग राती जोबन माती फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लहे मलाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया औतिन पूछो संतां जाए आप छोड़ सेवा करे फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाए फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती कदे ना रांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि फिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग

प्रेम समाय जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हट कामना आवै रास जमपुर बदे मारिय है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमक निमक जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाय इस भेखै थामहु गिरहु भला जिथहु को वरसाय। शब्द रत्ते तिन्ना सूजी पई दूजे भरम भुलाय। पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए। नानक ज्योति सुभावै।

मूल ना हो गई अचिंत वत्सै मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल होवा अमृत सारे तीर्थ नहाय सज्जन मिले सज्जना सच्चै शब्द सुपहाय घर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाय पाखंड जम काल ना छोड़े लै जासी पत गुआय नानक नाम रते से उबरे सच्चे स्यों निबलाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जितै हर का हर नाम बिलोई सहजे ही हर नाम लेहो हर तत् ना खोई नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोई सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है तिस गुर को सब नमस्कार करहु जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार मिल प्रीतम तिनी ते आया सच्चा प्रेम प्यार मन ही ते मन मानिया गुर कै शब्द अपार।

मन मुख सेती दो सुती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे इत दोस्ती चलन विकार जिन्ना अंदर सच्चे का भव नाही नाम ना करह प्यार नानक तिन स्यों क्या कीचै दोस्ती जे आप भुलाए करतार महला तीजा एक सदा एक तै रंग रह तिन कह हो सद बलिहारै जाओ तन मन धन अर्पी तिन को निव निव लागो पाए तिन मिलिया मन संतोखी है तृष्णा भुख सब जाए नानक नाम रते सुखिए सदा सच्चे स्यों लिव लाए पौड़ी तिस गुर को हों वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई तिस गुर को सद बलिहार ने जिन हर सेवा बणत बनाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छडाई तिस गुर को साबास है जिन हर सूझी पाई।

वर्मी मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेवी शब्द वसे मन आए मन तन शीतल शांत होए कृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे

अंध बहु कर्म कमावे, दूजे भाई प्यार अणहुंदा आप गणाईंदे, जम मार करे तिन खुआर, नानक किसनो आखी है, जाय आपे बख्शन हार पौड़ी, तू कर

गुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायरत रूप है बिन नावे लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चै सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावें सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज

सेवै जन्म मरण दुख जाय, सहसा मूल ना होवे हो मैं शब्द जलाय, कूड़ै की पाल विचों निकलै सच वसै मन आय, अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए, नानक पूरे कर्म

0: खलवाया हर नावै की वडियाई कर्म प्राप्त होवै गुरमुख विरलै किन्ह त्याया।
1: श्लोक महला तीजा। बिन सतगुर सेवे जगत मोआ बिरथा जन्म गवाए दूजै भाए।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखे आस पौड़ी हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई हर नाम हमारा वणज।

नहीं जाए पया। धन धन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया। धन धन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया। धन धन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया। तिस गुरसिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाणे गुरसिख चलिया। सलोक महला तीजा, मन हथ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हठ भेख कर भरम दे, दुख

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राख्या अमृत सच्चा नाव भोजन चाख्या तिपत रहे आघाए मिटी पपाख्या सब अंदर एक वरत है तिन विरले लाख्या जन नानक भय निहाल प्रभ की पाख्या। श्लोक महला तीजा सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार हम मैं मैल ना चुकई नाम ना लगे प्यार इक आपे बख्श मलायन दुबदा ताज विकार नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुर हेत प्यार। महला तीजा सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार दूजे भाए।

कटियन ते भाई से वीर अगे गए ना मनियन मार कड होवे पीर सोठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बूझै कोई रहाओ हाण हट कर यार जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस्त सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाइया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदियां कर धावनी ता को आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगण वन सोठ महला।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंदन वहन रत्ता हित कारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया

जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पावे है छूट है शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावे बिरले सूचाचारी तंतै को परम तंत मलाया।

बिहारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नरारे बहुड़ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोठ महला पहला जिस जल निध कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ हो वेश भेख चतराई दुबदा इहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावह घर अमृत।

सर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जीओ, अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर ना वो काही जीओ, निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जीओ, पर हर लोभ निंदा कूड त्यागो हो, सच गुर बचनी फल पाही जीओ, ज्यों पावै त्यों राखो हो हर जीओ, जन नानक शब्द सलाही जीओ, सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साक है, की पार घर जोहन लागा, घर दर राख है, जे रस चाख है, जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा, नाम वसार अन रस लोभाने, फिर पछताहे अपागा रहाओ, आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा, आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा, हर रस ऊपर अवर क्या कही है, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन एहो रस खोया,

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो हो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाई है निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाई है।

कर कर विगुते केहो चल ना चल दिया नाल गुरमुख हो वै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चान अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती।

नदर तुम्हारी अपने दासा नू कृपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाऊ शब्द सलाही सदा हो जीवा गुरमती भव भागा मेरा प्रभ साचा अत सवालियो गुर सेव्या चित लागा साचा शब्द सच्ची सच बाणी सो जन अन दिन जागा महा गंभीर सदा सुखदाता किसका अंत ना पाया पूरे गुरु की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों भरम चुकाया हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा ओ पाए गुर विचारा हर कै रंग राता शब्दे माता हम मैं तजे विकारा नानक नाम रत्ता इक रंगी शब्द सवारन हारा सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन बिसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से पाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटोह वारिया साध ही तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होआ हर वस्या मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर सिउ रहया समाई शब्द ना जान है ते अन्ने बोले ते कित आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी मान मुख मुग्ध गोबारा आपे कर वेखे मार्ग लाए भाई किस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटे भाई करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई।

मन पाणी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा लिब है तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नख है बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो

नाहीं, अंत गए पछताए। सफल जन्म भगतां का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अनदिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौं लागा तिन कै पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवै, अपने पाणे जो चले पाई। विछड़ चोटा खावै, बिन सतगुर सुख कदे ना पावै पाई। फिर पछोतावै, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म करह गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारो वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई। कोई ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन। निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप पछाणे। हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई। बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेखे सब ऊपर। जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसे मन अंतर। विचों आप गवाईए, सोठ महला तीजा चौथुके। सच्ची भगत।

सरनाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हिरदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रविया सब ठाई हिरदय नाम अपारा जुग जुग बाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जाग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझै गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवै सो मग पजाणै हर रस रसन रसाई जप तप संयम सब गुरते होवै हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिलै उल्टी पई पाई जीवत मरै ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाए मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागै पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाउ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुट है मनमुख कर्म करह पाई पल्लै किशु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईऐ पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरे मन वसै भाई सदा हर के गुण गाए रहाउ नामै ते सब उपजे भाई नाए विसरै मर जाए अज्ञानी जगत अंध है भाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे भाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है भाई हिरदै रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे भाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा भाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

आवे है। हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई इहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुरु दाता मेल मलाव हो हर नाम देव हो आधारे रहाओ, मनसा मार दुबदा सहज सुमाणी पाया नाम अपारा, हर रस चाख मन निर्मल हुआ किल बिख काटन हारा, शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई, अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई, दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जापह से, सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या, नामे नाम समाए

राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करहे सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हौं मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखे पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्शमला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमणिया

सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाउ आपे जल थल सबत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सब नारिजक समाह दा प्यारा दूजे

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारै पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपूरै मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप जा।

जन नानक सद कुर्बान झूठ महला चौथा आपे सेवा लाए दा प्यारा आपे भगत उमाहा।

नाही, जे को रखै लुकाई, सब किस तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाए, जन नानक अवर ना कोई, सोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौ जाती किस आराधी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरभउ निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या किसका मोहताजा रहाउ, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख सहज समाणी।

आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निधान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक कौ तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने, जाको तुदे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिटियो अज्ञाना, प्रगट भय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुपहाई। कहो नानक जिस भय दयाला, ता को मन ते बिसर ना जाई। सोट महला पंजवा, सगल समग्री मोहे।

ताद शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्ब थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीव हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाई है।

पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाइए हृदय त्याय सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

युग अंतर गुरु नानक की वडियाई चौठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

मल मल धोवा एहो मन तै कू देसा सुन मीता हौ तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना कीजै सरन परीजै करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दाता रे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया जे फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरु ते मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेह ठाकुर को सुनत अगाद बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूर सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी
चोट महल्ला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख।

अब कहां करे तू, जो फाटियो सगलो लिखा, महा आनंद भई सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर सियों मन मानिया, रंग रते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भान अंतर बिद जाने, ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह न जाई रहाओ दुख सोग का टाहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पाणी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरणी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवर

आवहो पूर्ण अबनासी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन कराव नहार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घर आया तूर्ठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया

थीवे विघ्न बनासन सब दुख नासन गुरचरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी धारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माध हो जिया संतो हो कट कट रहे आसमाहेउ पूर्ण पूर रहे सर्ब मह जल थलर मैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावे सतगुर परम चुकायु सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे आसमायु सूठ महला पंजवा जां कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल फल त्रे पवन रुखी सोठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडाव हो एहे पीतर ते इनको डार हो आपन निकट बलाव हो अपनी बिद आप जनाव हो

गुरपूरा भेतियो वडभागी जन नानक कतह ना धावहु सूरठ महला पंजवां जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल न जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मैं रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावुहु पूर्ण होवै काला रहाउ सार समालै नित प्रतपालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवां अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कौ बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़ दुख ना होई रहाओ वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई सूरठ महला पंजवां जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहारै।

औखद मुख देव काटे जम की फंदा रहाउ। समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा, अपना दास हर आप उभारिया। नानक नाम अधारा, चौथ महला पंजवा, अंतर की गत तुम ही जानी। तुझ ही पाहे नबेरो, बख्श लहो साहिब प्रभ अपने। लाख खते कर फेरो।

संत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोहित।

रतन जास गाई, मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण बसाई, सुख पाया सहज धुन उपजी, रोगा घाण मटाई रहा, क्या गुण तेरे आख बखाना, कीमत कहन ना जाई, नानक भगत पए अबनासी, अपना प्रभ भया सहाई।

पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरपूरा सुखदाता, करन कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, आनंद बनोद मंगल गुण गावहु, गुरु नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

गुरु ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंते आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

नाम अधारू नानक पातराखी परमेश्वर उदरिया सब संसारू सोठ महला पंजवा मेरा सत

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पति आया। उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा। अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा जिस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गुआई चौठ महला पंजवा हृदय नाम वसाय हो घर बैठे गुरु ते आयो हो।

ज्ञान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस तरिया, उठत बैठत हर हर त्याई। आन दिन सो कृत करिए रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। कोवड़ भागी पा।

प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर आया।

रखवाला कर कृपा अपनी कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाउ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया

पूरी प्रभ रव रहे पर पूरी हेम कुशल भया इस नाना पार ब्रह्म बितो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद तारी बिघन न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सुर

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवै।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चढ़ के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हौ हौ पीत भयो है बीचो सुनत।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बेद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश करना।

कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई। तार अनग्रहो आप प्रभ स्वामी, पात मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, वांछो संतां तूड़ी। सोठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारी, प्रभ सबे काज सवारी, हरे अपनी किरपा तारी, प्रभ पूरन पैज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल

प्रभ की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आगे सुख गुर।

मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभु अविनाशी ताकी सेवना बिरथी जासी।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर्व

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

जो शिवर तिसकी गत हुए उधर है सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया सोठ महला पंजवा गुरपुरे पूरी कीनी बख्शे अपनी कर दीनी नित आनंद सुख पाया थाम सगले सुखी वसाया हर

मन पानी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी चौथ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवां प्रभ अपना हृदय त्याई घर सही सलामत आई संतोख भया संस्था।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा विसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी

आओ कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल बयाल ज्यों परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोगहारियो।

तै खोजत उदयाना बहुत जन्म भरमत तै हारियो अस फिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज नानक बात बताई सोठ महला नवा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जेहे सिमरत गनकासी उदरी तां को जस उरतारो रहाओ अटल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाव। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

तिमर मोह मन रहो पुरजाही रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निस बासुर नह छूटी अधमाई सा

अन को तावत केहे बिदरूप को ताहि रहाव वेद प्राण सिमरत के मत सुन निमुख नाही ए बसावे पर धन पर दारा स्यो रचियो बिरथा जन्म सिरावे मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बनासी तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फांसी सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के उर्जे ओ कहां गवार अज

पूत संबंधी सगरे धन सिंह लागे जब ही निर्धन देखो नर कौ संग साड सब भागे कहो कहां या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीनानाथ सकल पै भंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों भयो ना सूदो।

कै झूठह लागियो जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

आसा मनसा सगल त्यागै जागते रह निरासा। काम क्रोध जे परसै नाहन तेहे घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेहे नर को कीनी तेहे एहे जुगत पछानी। नानक लीन

बिंद सुखवासी नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राते जल बूझी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

पहाय। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख देव वडियाई। अपर अपार अगम अगोचर, कहना कीम ना पाई। सुन संवाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नाम। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहाम। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ाम। मन मुख झूठ लह पैमान।

का क्या कथिय भाई, चालो सदार जाय। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक भरम भला एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे कछ होए अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुरु

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ बिख माया चित मोहया भाई चतराई पत खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आकिय भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यो बैरागी है भाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनहु गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाई है भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूढ़े हैं ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय पावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए फिर है बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई गुरते बुझे सुजान जो बीते से उबरे भाई शब्द सच्चा निशान ईंदन अदक सके लिए भाई पाव करन चक पाई हिन पल नाम हृदय वसै भाई नानक।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेजो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती।

कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्ह उपाया पाई करन कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा भेटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविए पाई ब्रह्म पौ होवै नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै परगास गुरबचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समरथ हो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई एनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआव करनी सुन सुन जीविया पाई निश्चल पाया थाओ जिस प्रतीत ना आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहिब पाई हाँ तिसकै बल जाओ ओ निर्गुण आरे पालदा पाई देन थावे थाओ रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाम जिस गुर साचा भेटिए पाई पूरा तिस करमाव तिस बिन घड़ी ना जीविए पाई सर्ब कला भरपूर सास ग्रास ना विसरै पाई पेखों सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्ब रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया पाई भौजल दुख संसार कर कृपा नगर निहालिया पाई कीतोन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार चोरठ महला पंजवां मात गर्ब दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया जिसनो कीतो कर्म आप प्यारी तिस पूरा गुरु मलाया सो अरादे सास सास।

भ्रम आया प्यारी अनक जून दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारी के लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिया प्यारी जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारी तिन तन की तारोग कौड़ा हुए प्रतिष्ठिया प्यारी तिसते उपजिया सोग भोग पुंचाए पुलायन प्यारी उतरे नहीं वजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवे मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी से तन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरे नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत संग ना कीजई प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारी सो मोहि काले उठ जाय मन मुख ढोई नह मिले प्यारी।

प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलायुन प्यारी साचा नाम संभाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अनगिन कीर्तन गुण रवै प्यारी अमृत पूर भरे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भवजल पार परे जिस भावै तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पे प्यारी जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसर प्यारी नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पुअंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक हम बुद्ध बाधे।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, डुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरै एह बिद,

भूम बहुअर्पे नह मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंडो होता खट कर्मा रत रहता। हाँ हाँ करत बंदन मह परया।

राजन की रचना करया हुकम अफारा तेज सोनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा हर कीरत साध संगत है तेर करमन कै कर्मा कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा शिंगारी नाउ मन

पुरख सुजान कुल उधारी अपना सोजन होवे परवान गुरमुख मोए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है सत संगत साधु लग हर

सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानु सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास, महला तीजा से सहन से सजना, जे गुरमुख मिलह सुपाई।

जे अवमान करहे वेकार, मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार। पौड़ी तुद आपे जगत अपाए कै, आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया। माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगिया, फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे। से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने, सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया, तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा, घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत तज बिक संग्रह करत आप खुआया, गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया।

विरसा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइय तिस रूप नारेख।

हरे आपे से टसवार सिर तंदे लाए दा इकना भगती लाए एक आप खुआए दा इकना मार्ग पाए एक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हऊ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेव है अपना हों तिन बलिहारे जाऊं महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए भेख धारी भेख कर थके अट अट तीरथ नहाए मन की सार ना जाननी हम मैं परम पलाए गुर प्रसादी भउ पया बडभाग वस्या मन आए पै पय मन वस हुआ हम मैं शब्द जलाए सच रत्ते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा द्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फेरे से बदे दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाय सहसा रूप ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाए नानक नदरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दुह चारन बदनाउ नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ। पौड़ी। जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड गया ते दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खादै मन तृप्ती है पाईऐ मोख द्वार इहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार। ए मदावनी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखीऐ उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व

सत हुए, मनमुख परमै सहसा हुए, अंतर चिंता नींद ना सोए, ज्ञानी जाग है सब है सुपाए, नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी, से हर नाम त्याव है जो हर रत्या, हर एक त्याव है एक, इको हर सत्या, हर इको वरत एक, इको उत्पत्या, जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या, गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया, सलोक महला तीजा, अंतर ज्ञान ना आयु, जित किस सोजी पाई, ऋण डिठा क्या सलाही है, अंधा अंध कमाई, नानक शब्द पछाणी है, नाम वसै मन आई, महला तीजा, इक्का बाणी इक गुर, इको शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच, रतनी परे भंडार, गुर किरपा ते पाइन, जे देवै देवन हार, सच्चा सौदा लाभ सदा, खटिया नाम अपार, विख विच अमृत प्रगटिया, कर्म पिया मनहार, नानक सच सलाही है, धन सवारन हार पौड़ी, जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई, जे को बोलै सच कूड़ा जल जावई, कूड़ियारी रजै कूड़ जो विष्टा काग खावई, जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावई, हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई, सलोक महला तीजा, सेखा चौ चक्या चौ आया, एहो मन इकत घर आन, एहड़ ते हड़ छड तू गुर का शब्द पछाण, सतगुरे अगै टै पौ सब।

लायो अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध ना काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाए जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो।

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी।

पंडित भूले दूजे लागे, माया कै व्यापार अंतर तृष्णा भुख है, मूर्ख भुखिया मोहे द्वार। सतगुर सेवया सुख पाया, सच्चे शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई, सच्चे नाहीं प्यार। नानक नाम रते सहजे रजे,

आई, अन पर अज्ञान अंधेर है, सोधना काई पाए, मन हठ सहजना बीजेओ, भुखा के अगे खाए, नाम निदान वसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिले वडियाईया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे, यों गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट काली, नानक गुरमुख बुझी है, जा आपे नदर करी। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया, आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना, दरगाह पावह मान पौड़ी, गुरमुख सखिया सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया, जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया, गुर सतगुर

अचेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे। जमदर बदे मारी है फिर विस्ता माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेव है अपना से जन सच्चे परवान। हर कह नाए समाए रहे चूकाया मन जान। पौड़ी धन संपै माया संची है अंते दुखदाई। घर मंदिर महल सवारी है किस साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है कितै काम ना आई। जन लाभ हो चेत हर नाम सिउ अंत होए सखाई। जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाय। नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक

जो नाम हर राती जिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित्र है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित्र है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित्र है। जो बोलह हर हर राम नाम हर साती जिनके पोतै पुन है से गुरमुख सिख गुरु पह जाती। सलोक महला तीजा नानक नाम कुथिया हलत पलत सब जाय जप तप संयम सब।

संतोखिया फिर भुख ना लगे आए। नानक जे गुरमुख कर है सो परवान है, जो नाम रहे लिव लाए पौड़ी। हौ बलिहारी तिनको जो गुरमुख सिखा, जो हर नाम त्याईंदे तिन दर्शन पिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा, हर जस मन लिखा। हर नाम सलाही रंग सियो, सब किल विख क्रिखा। तन तन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुर धरे विखा। सलोक महला तीजा, गुर बिन ज्ञान ना होवई।

है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल होए विच पाथर कृम

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारै तप्यो सुत्या गई विहाय सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाय जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाए नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याय महला तीजा शब्द रते हम मैं गई सुभावंती नार फिर कह पाणे सदा चले।

है। हर दासन को मित्र हर दासन कह वस है, ज्यों जंती कह वस जंत, हर के दास हर त्याईंदी, कर प्रीतम स्यो नेव, कृपा कर कह सुनो प्रभ, सब जग मह वरसै मेह, जो हर दासन की उस्तत है, सा हर की वडियाई, हर अपनी वडियाई भाव दी, जन का जयकार कराई, सो हर जन नाम त्याईंदा, हर हर जन एक समान, जन नानक हर का दास है, हर पैज रखो भगवान, महला चौथा, नानक प्रीत लाई तिन साचै, तिस बिन रहन ना जाई, सतगुर मिले ता पूरा पाई, हर रस रसन रसाई पौड़ी, रैन दिन सप्रभात, तू है ही गावना, जी जंत सरबत, नाउ तेरा त्यावना।

संसार अंध गहेरा चौदिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदार रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गाडले कंचन पारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

झूठी माया आप बंधाया, ज्यो नरनी भ्रम सूआ। वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियानी, उठ पंडित पै चले निरासा। मन रे सरयो ना एक काजा, भजियो ना रघुपति।

ना जाई। हमरा भरम गया पौ भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाऊ बाजीगर डंक बजाई।

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाव। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम कर कर मैया।

जित लाई तित लागी चेरी तैं समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जेह बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिए ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाउ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जनदाता।

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाई

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उभा करिया।

तहे अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह दीप।

पारस कंचन होया मुख मन सारतन परोया निज पाओ पया ब्रह्म पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर।

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरप दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीर, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यों कही है जा कारण हम तुम आरादी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो केह लेख ना विचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिद कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत पुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चुकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी।

राखै जा सोए। जह देखा तह रह समाय, तुद बिन दूजी नाई जाय। जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए। हुण उठ चल।

तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रह लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर स्यों चित लागे फिर का न खाई रहाओ सच सिमरिया हुए परगास ताते बिख्या।

काती कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान संबंध सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान, तनासरी महला पहला का तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप, था नष्ट जग प्रित होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी तामीत है नाक पकड़ है, ठगण को संसार रहाओ, आंट सेती नाक पकड़ है, सूझते तिन लो, मगर पाचे कछ ना सूझे, एहो पदम अलो, खतरिया ता धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण शुद्ध है, करह वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास, तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तुय को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद विमल नन एक, पद गंध बिन सहस तव गंध, इव चलत मोही।

जन निर्मल होए, अंतर नाम बसै पात उत्तम होए। रहाओ गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई। भगत करे जन वडियाई पाए, काच रखे सुख सहज समाए।

गूढ़ को सत तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मन मुख अंधे दुख विहानी।

क्या पावा, तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

आव गुरमुख करनी कार कमावे ताए समान की सोजी पावे मन मैं मत मैगल मिकदारा गुरी अंकस मार जवानन हारा मन असाद साद जन कोई अचार चरै ता निर्मल होई गुरमुख एहो मन लया सो।

जाने, नानक गुरमुख नाम पछाने। तनासरी महला तीजा, काका तन संचह मूर्ख गवार, मनमुख भूले अंध गवार। बिख्या कै तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। साचा तन गुरमति पाए, काचा तन हुनिया वै जाए रहाव। मनमुख भूले सब मरह गवार, पवजल डूबे ना उरवार ना पार। सतगुर पेते पूरे भाग, साच रखे अहनस बैराग। चहु जोग में है अमृत सा।

सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए ते जन तन जिन एक नाम लिव लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुर

बहुत अभमान अहंकार डूबै न पावै मान पाप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीख कपे खारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम भले

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सत गुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर उतारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हौ मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सुवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रत्ता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर

हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली, तनासरी महला चौथा, हर हर बूंद पए हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिल लाती, हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी, मुख देव हो हर निमखाती, हर बिन रह ना सको एक राती, ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहा, तुम हर सरवर आते अगाह, हम लह ना सक हैं अंत माती, तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो हो आपन गाती, हर के संत जना हर जपेओ, गुर रंग चलो लहराती, हर हर भगत बनी अत सुबा, हर जपेओ उत्तम पाती, आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावे पाती, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राखो लाज पगाती, तनासरी महला चौथा, कर युग का धर्म कहो तुम पाई, के विशुट है हम छुटका की, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जपे हो तरह तराकी, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो हो अपना, हम मांगी भगत एकाकी रहाओ, हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपियो हर बचना की, लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जम की बाकी, हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साध जना की, दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चरयो चंद चंदा की, तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर, तुम आपे आप अपाकी, जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय, कर दासन दास दसा की, तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उरतार बीचार मरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने, अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी, गुरपूरे प्रगट कर दीने, राम पारस चंदन हम काष्ट लोष, हर संग हरि सतसंग पहे, हर कंचन चंदन कीने रहाओ, नव से खट बोल है मुख आगर, मेरा हर प्रभ इव नाप कीने, जन नानक हर हृदय सद त्याव हो, यों हर प्रभ मेरा पीने, तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर, इव हर हर नाम त्याई, हर दरगह पावे है फिर जन्म ना आवे है, हर हर हर ज्योत समाई, जप मन नाम हरी, हो हे सर्व सुखी।

प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हो पाऊं दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाव तना श्री महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे है सब गावे है हर हर उत्तम बाणी गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उज्जल हुई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पवजल करना।

प्यारी सब तुझ त्यावह मेरे साह ज्यो भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

मरारी ज्यों पावै त्यों राखहु स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी महला पंजवां दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो।

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भउ भागा भई परा।

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे बिन हर कहां अगाई रहा दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे ना भूखा उदम करे स्वान की न्याई चारे कुंटा को खा काम मंत कामी बहु नारी।

मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई वर्ण न साको उस्तत ताकी, कीमत कहन ना जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर।

ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਰਹੇ ਓਲਾ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜਨ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਾ

पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्दभ भस्म संगीत अमृत संग।

केले वेख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन ने तर दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवा पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समा

सदा सदा तुद त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई। अंध रूप रव्यो सब मदे, जत कत पेखों जाय। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतत पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाए, मुख ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई। तनासरी महला पंजवां, जिन कीने वस अपने त्रै गुण। भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे। क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो। साध प्रसाद हर हर हर गा।

दीठी ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन ओह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर लै आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हमे अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले।

निर्मोल कहार जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महा।

ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देव अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे।

पीकै मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवां मेरा लागू राम सिउं हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख

हार बंधन काट ले हो अपने कर कभू न आवह हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभु को आरादी नानक सद कुर्बान राग तना श्री

आन संयम किस ना सूजै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोए जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाइए साध संगत बिन सजाए अंधार चरण कमल आधार।

रहाओ साध की शोभायत मचकीनी संत वडाई हर जस चीनी आनंद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जह साध संतन होवै एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक करा।

जाति रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

अंग जन को प्रभे अपने का तान जो तू करह करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति ए बिद जाति तनासरी महला पंजवां सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किन्ह ना दुत्तर भाखे।

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजै तनासरी महला।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक है निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल क्लेश लोभ मोह महा पौजल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे।

टेक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जल पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का

कर आई संत अनुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाय तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाय।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जा कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावै नाम जपावै ता का युग मह धर्मा।

जिस जन कह पाले सोई पूरा साहा, नाम व्यवहारा नानक अधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा, नेत्र पनीत भय दर्श पेखे, माता परों रवाल, रस रस गुण गा।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिद पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना

प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी रहाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी। एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरै जाति। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै। चरण कमल निद थाती रहाउ जिसका साथ नहीं रख लिया। पूर्ण प्रभ की भक्ति मेल लियो आपे सुखदाता। नानक हर राखी पाती। तनासरी महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझ ते निवरह। प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओहो तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी ओर हर नीत मरार सहाय हो।

नानके आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख

मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यो लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नवा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ, पोह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई, बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई, तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ, मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह देवाना, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना, तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ, पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो, चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नार, मुक्त ताहे तुम मानो, तनासरी महला नौवा, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निद पार परो रहाओ, जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो, तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरसागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ, रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सर्वर मह हंस, हंस मह सागर,

आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हौ मैं मार मिले भगत हारी अनक जतन कर काल संताए मरन लखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे कहतो पढ़तो सुनतो एक धीरज धर्म धरनी तर टेक जत सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द भरम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया परवान ना तिस मरण ना आमन जान ठाकुर मह दास दास मह सोए जह देखा तह अवर ना कोई गुरमुख भगत सहज घर पाईए बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन

लेख है, आपे सुरत बुझाई, नानक साहेब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई, तुम सारे अवर ना कोए, आया जायसी जियो, हुक्मी होए नबेड़, परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकथ कहाए, सच मह साच समाना, आप अपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाणा, सच्ची वडियाई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवर ना दूजा, नाम तेरे वडियाई, तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जियो, एक साहिब दोए राह, बाद वदंदिया जियो, दोए राह चलाए हुक्म सबाए, जन्म मुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली, बेखलादी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म ना बूझे, हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब शब्द सियापे, साचा सिर जनहारा, भगत सोह है दरबार, शब्द सोहाया जियो, बोल है अमृत बाण, रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तसाए, गुर कै शब्द विकाणे, पारस परसे है पारस होए, जां तेरे मन पाणे, अमरा पद पाया आप गवाया, बिरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहन दर साचे, साचे के वापारी, भूख प्यासो आत, क्यों दर जाए साजियो, सतगुर पूछो जाए, नाम त्याए साजियो, सच नाम त्याई साच चवाई, गुरमुख साच पछाणा, दीना नाथ दयाल निरंजन।

सत संगत मिलै बड भाग ता हर रस आवे जीओ दूजे भाए दुख होए मनमुख जम जोहया जीओ हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहया जीओ माया दुख मोहया।

अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया धोया दूजे भाई दुख होए मनमुख जम जोहया जियो कर किरपा ले हो मलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया आन दिन जपत रह दिन राती सहजी नाम ते आया नामो नाम मिली वड्याई नानक नाम मन पावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जियो नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जियो अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

आए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नाम, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी घटते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो, एह संजम हर पाइय, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो क्रंक निसनाद बालहा।

आऊ ज्यो धरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर, मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै, हौ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो, चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल।

दारू करमरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पातक हरता त्रे पवन नाथ री तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत।

चौथा जैत श्री महला चौथा हीरा लाल अमूल कह पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानो लाखा मेरा मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जन नीके हर साध

तुम वड़ अगम वड़ पुरखा जन नानक हर कृपा धारी पाखान डुबत हर राखा जैत श्री महला चौथा हम बारिक कछु न जान है गत मेत तेरे मूर्ख मुग्ध एना हर कृपा धार दी।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही हर मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया भुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाउ धन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाई जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेन साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन तने अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करहु गुर मेलहु,

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमा हाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कह रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल सत

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय।

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरियो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला।

जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे मह दीप रहाउ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

यारस मह मग्न होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ धारहु हर प्रिय।

लाड़दास जन अपने कुदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के भीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भज

जम को त्रास भयो उरे अंतर, सरन गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुगद लोभी फुन, करत पाप अबहारा

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत मैं हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दास प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया, यार वे प्रयह बे सखिया, मुँह कही ना जेहिया, यार वे हिक डू हिक चाड़े, हों किस चिते हिया, हिक डू हिक चाड़े, अनक प्यारे, नित कर दे भोग बलासा, तिना देख मन चाओ उठंदा, हों कद पाई गुण तासा, जिन्नी मैंडा लाल रजाया, हों तिस आग्या मन देहिया, नानक कह सुन बिनो सुहागण, मूं दस दिखा पेर के हिया, यार वे पेरे आपन पाना, किसनीशी छंदा, यार वे तैरा व्या, लालन मूं दस दसंदा, लालन तै पाया आप गवाया, जै तन भाग मथाने, बाहां पकड़ ठाकुर हौ किदी, गुण अवगुण ना पछाणे, गुण हार तै पाया, रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किस सुहंदा, जन नानक तन सुहागण साई, जिस संग पता

नित ना पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाम नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ संत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मन है चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों निवलाई है अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है सलोक रे मन ता कौ त्याई है सब बिद जा कै हाथ राम नाम तन संची है।

सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी भज सरन स्वामी सुखहगामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक।

जवान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथेया, किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया। उदम कर है अनेक हर नाम ना गावही, पर मह जोन असंक मर जन्म है आवही। पशु पंखी सैल तरवर गणत कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे। रतन जन्म हर अंत जूए, प्रभु आप ना पावही। बिनवंत नानक पर मह परमाए, खिन एक टिकन ना पावही। जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया, कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया। नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया। कहया ना मन है सिर खाक छान है, जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूर्ण, नह निमख मन मह वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर, बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया।

थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासन मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गबार हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार बिकम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है खंडन कल कलिश है प्रभ सिमर नानक नह दूर नह हब रंग मान है जिस संग तैस्यो लाई है नेहो सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर

साध संग हर गुण रमहु, बिनसे सब रोग सलोक, कुटुंब जतन करनं, माया अनेक उदम है,

साक्षात हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना यादरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना किसकी धूड़ मन उदर प्रभ हुए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

का बसंत स्वर्ग लोक कहै, जित ते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाऊ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

कबहू चूरी है। देहो दर्श मन चाहो लह जाहे वसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना धूरी है। पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नाम सर्वनं सनंत शब्द अमृत है। नानक तिन सत बलिहारन जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है। हब कूड़ा वे कम इकस साई बाहरी नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी। सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा। हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा। चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा। संतां संग उदार सगला दुख लथा। सलोक भावी अदोत करन हर रमणं संजोग पूर्ण है। गोपाल दर्श भेटं।

जित मलंदड़ो महापीरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप।

रंग पाइय वड्डै पुन्न आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन्यो पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया मन तन भये संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सबाया सलोक गुरु गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है भवजल विखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह एक सेवी एक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचया।

प्रसाद राग टोडी महला चौथा घर पहला हर बिन रह ना सकै मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहुर न भवजन फेरा रहाउ मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैन हो हर प्रभ हेरा सतगुर दे आ

कहिय है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया।

आद संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

हीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कशु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न

पावह, सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहू ते छूटह, पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत

ता थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो भस्मा भूत हुआ खिन भीतर।

सरन परे दुख पंजन जा का बड परताप तोड़ी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारी रहाव खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परमगत पाइए माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो।

हजूर जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने पूर।

निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पये।

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पय मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवै परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे अस्थिर भये साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हुए जिन

कोट जन्म के किल विख नास है, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण पई आसा, दर्शन भेटत उतरी भुख, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तीन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख, टोडी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उरतारी, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहाओ, पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत बिचारी, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारी, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछ ना बिचारी, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारी, टूडी महला नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कहो कहां अपनी अदम्भाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई। एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमान सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपैत इस देव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक।

खुदर मंजारा, सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन, हर अंत छावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर, तिस जन को करहो नमस्कारा। हर कृपा ते पाइए हर जप, नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा, जप मन हर हर नाम नित त्याए। जो इच्छा है सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर स्यो प्रीत लगाए। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तू दरगोस पुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ्त है दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

ता दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांग भीख्या पाए रहाऊ केसर कुसुम मृग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होई तेरे नाम निवे रहे लिव लाई नानक तिन दर पीछिया पाई तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहु तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों धन सीजै।

कामन नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सफाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगै दान वे लालो, शर्म धर्म दोए शप खलोए, कूड़ फिरै परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

मास पुरी विच आख मसोला जिन अपाई रंग रवाई बैठा वेखै वख अकेला सच्चा सो साहिब सच तपावस सचड़ा न्याओ करेग मसोला काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदू सतान संभाल सी बोला आवन अठतरै जान सतानवे होर पी उठसी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेला तलंग महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब आए हुक्म खसमा हो हुक्म सब वर्तनी सच साहिब साचा खेल सब हर तनी सलाह हो सच सब ऊपर हर तनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखै हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश घर मंदर हर बनी विच वरतै नानक आप झूठ कहो क्या गनी तलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावै दुर्मतिया जब आणै बलवंच कर झूठ तब जाणै जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना चेतै हर नाम खिन मह बिनसै सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाउ सावेला चित ना आवै जित आई कंटक काल ग्रसै तिस नानक लए छडाई जिस कृपा कर हृदय वसै तलंग महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद खाक नूर करदम आलम दुनियाए असमान जिमी दरखत आब पैदाइश खुदाए बंदे चश्म दीदंग फनाए दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए रहाओ गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराए दिल कब्ज कब्जा कादरू दूजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाए जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए हुआल मलूम कर दूं पाक अल्लाह बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा तलंग घर दूजा।

दान गोविंद अनूपा, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत

सगले आपू तेरे जन देख दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

उस्तत है जो हर प्रभ भावै जो गुरमुख प्यारा सेवंदे तिन हर फल पावै जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिना जी प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीवंदे हर नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को घुम जाया वे आप छुटे परवार सिउ सब जगत छडाया गुर प्यारे हर सेविया गुर धन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो जो गुर सिख गुर सेवंदे से पुन पराणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया हर दरगाह पैनाइया हर आप गल लाइया जो गुरमुख नाम ते आएंदे

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौ काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहार।

भजन ते निर्भय पद पावे तलंग महला नौ जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफल सोया जो तन उपजया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जां स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौतुम जानो नानक हर

संपत रथ धन राज सिउ अतने हो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिय इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेता सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

भोगवै भोगी होवै खाए तपिया होवै तप करी तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सनीजै भाई जे को बह अलाए रहाउ जैसा बीजै सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगै पुछ न होवै जे सण निशान जाए तैसो जैसा काढ़ीऐ

आदि जोग ना खिंसा जोग ना दंड है जोग ना भस्म चढ़ाई है जोग ना मुंडी मूंड मडाय है जोग ना सिंगी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जोगत इव पाई है गली जोग ना होई एक दृष्ट कर सम सर जान।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै धावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै घर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बला।

आद मन राम नाम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के गुर तुठे मन पर बोधया हर पिया रस गट के रहाओ सत संगत उत्तम सत गुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा धार मेलो सत संगत हम तो वह पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचो सिर गुर के जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो लाज जन के सुई महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलगा पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी हर अस्थर सेव सुख समगा मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ नरपत राजे रंग रस मान है बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फलगा हर राख राख जन किरमत मारी सरनागत पुरख प्रत पलगा दर्शन संत देहो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोको की जय दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विट्टो सद घूमगा।

हृदा सुध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरे सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाओ जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई अंतर रोग महा अभमाना दूजे

गुण नाम बिरडाई, हौ हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करी मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रहै दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाणी रहाउ, हर रंग कौ लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जेसौ लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज समाई, हर रस जन चाखो हो जे पाई, तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हौ मैं करे बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

इशारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया न जाई हर तन संचियै पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटियै होरत है होरत उपाए हर तन कितै ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे।

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हलत पलत हर तन की भगतां को मिली वडियाई। हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा। यो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है। किसे का गवाया ना जाई। हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी। जम जा गाती डंड ना लगाई। साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया। तिना एक विख नाल ना जाई। हलते विच साकत दहेले पए हथों छुड़क गया। अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई। इस हर धन का साहु हर आप है संत हो। जिसनों दे सो हर धन लद चलाई। इस

जिसनो हर सो परसन हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो निह

मान जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै हर की वडियाई देखो संत हो हर निमाणिया मान दिवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाई सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जान है क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझै जेहा को करे तेहा को पाई मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है बुरा भला तुद सब किस सूझै तुद भावै तिवै बला वह रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जेही तू नदर करह तेहा को होवै बिन नदरी नाही को भेख तेरी वडियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई जिसने

जिनकै अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रूप गवाई, ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया, तिन पवित परम पद पाई, मेरे राम हर जन अरोग पये, गुरबचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हऊ मैं रोग गए रहाउ, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हऊ मैं कार कमाई, जिनकीए तिसह ना चेतह बपड़ी, हर गुरमुख सूझी पाई, हऊ मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख भारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन को हों बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आपे वेख हर बिगसै।

कर सकी है। अपना कीता किशु ना होए, ज्यों हर भावे त्यों रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वास, असा जोर नाही जे किश कर हम साक है।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता हुआ। इकना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करह से रोवे। हर की वडिआई हौ आख ना साका, हौ मूल।

तू ही महला पंजवा कीता लोड़ है सो प्रभ होए तुझ बिन दूजा नाही कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी सरन पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाउ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारे कछु ना पाइए साच लगे ता हमें जाइए जिसनो लाए लए सो लागे ज्ञान रतन अंतर तिस जागे दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दोए कर जोड़ करो अरदास तुद

पंजवां गृहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस पे आसी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंतरी जाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बिद ही अरो तीर निमानू मिल साजन हों तुझ कुर्बानू रहाओ एका सेज विशी धन कन

सी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले झागी, हिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना याना, माया मोह रंग लपटा ना रहाओ, लोभ लहर को बिगस फूल बैठा, साध जना का

ना दृष्ट नाही रे पेखते अंधे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मुहे साध संग दी जय तो किस पाई जो

आई, जा कहो बिन सतबार ना काई, इह सुपना सोवत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था मह लपटाने रहाउ, महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊठ सधारा, ऊचते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बनाहे अपारा, दूसर हो

जान्यवा जीवत मरे बुझे प्रभ सोई तिस जन कर्म प्राप्त होई सुन साजन यों दुत्तर तरिय मिल साधु हर नाम उच्चरिय रहाउ एक बिना दूजा नहीं जानै घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै जो किश करै सोई भल मानै आद अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी जां कै हिरदै वसै मरारी सूही महला पंजवा गुर परमेश्वर करनै हार सगल सिष्ट को दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याई दुख दर्द इस तन ते जाए रहाउ भव जल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवै शांत सतगुर की रेन वड भागी पावै नानक गुर को सद बल जावे सूही महला पंजवा गुरे अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस

जन धूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभ चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

सुख माना नानक दीवन हार सुजाना सूही महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे पाज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दू कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत परन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ। जीवन पदवी हर का नाउ, मन तन निर्मल साच सुआउ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखित होए ता पाई है।

त्यो मूड़ा जित तू लाव है तित तित लगना जा तू देहे तेरा नाव जपना रहाउ हर के दास हर सेती राते राम रसायण अन दिन माते बाहा पकर प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की पासी।

अल्लाह पंजवा दर्शन को लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई

रहाऊ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहो विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहोर ना फिरिया सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहो विद रूप रंग अपारा पेख खुशी भोग नहीं हारा।

नी आया, पुरुष आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाउ, महादुत्तर माया, जैसे पवन चलाया, सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया, गृह अंध कुपाया, पावक सगराया, गही ओट सधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई जिसनो हो ही दयाला।

जित तुध त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम। हौं सो थान पालन आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरह बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा। लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूट है, संतो हो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिय रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना, इस कान में मैल प्रिय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख

जल थल मही अल सोई रहाव। कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर स्यों आन मिलावे। माया मोह परम पहु काटे, संत सरण जो आवे। जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावे। जन की महिमा केतक बरनऊ,

एक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाउ। अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई। आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा। नानक दया करी सुख दाता केटिया सतगुर पूरा। सूही महला पंजवां जब कसना सी।

तन हृदय उड़तारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़े अवर ना कोई जिसनो लाए लह सो लागै।

स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श ना मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म न

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंतै पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई

निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गया ले हो प्रीतम प्रबराया, भणत नानक सहो है पी होसी, जय पावे प्यारा तैर वेसी, सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जी हो, विण नावै भ्रम भुलिया, ठग मुठी कूड़े आर जीओ।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अन्न को कीजै मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख भुलाया

मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना, जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है,

शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझह रजाए शब्द कमाई है।

साचा साचा शब्द सुनाई, गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाई, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए, सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नहातै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मन लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए, तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत

चाखी तृष्णा अग्न बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहिया समाय। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै भाई प्यारी सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चे नाई प्यारी एको सच्चा सब मह वरतै, विरला को विचारी आपे मेल लय ता बख्शे सच्ची भगत सवारी। सबो सच सच सच वरतै, गुरमुख कोई जाने जम्मण मरना हुक्मो वरतै, गुरमुख आप पछाणे नाम त्याए ता सतगुर पाई, जो इच्छै सो फल पाई। नानक तिसदा सब किश होवै, जे विचो आप गवाए। सूही महला तीजा, काया कामन अत सवालियो, फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागण। गुर का शब्द सुमहले

अलख न लखिया जाई मनमुख मुगद बूझै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निद पाईए गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाईए नाही नाम पाईए गुर विचारा गुरमुख होवै सो काया खोजे होर सब भरम भलाई जिसनो दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतुराई काया अंदर भाओ भाओ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चै अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा पूरे सतगुर आप दिखाया।

कोई अमृत भरे भरपूर है, ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन, सेवड भागी जे ओना मिल रहे, अन दिन नाम लेन, देसी रिजक संवाहे, जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप तनी, सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए, सो प्रभ सदा संभाल, मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे, हम मैं शब्द जलाए, सो सहो सच्चा विसरे, त्रिग जीवन संसार, नदर करे ना

आग्या धरी विचो आप गवाए खिंचो तान विगुची है एक सस्यों लिवलाए हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहेरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल मिण नावै नाल ना चल सी

अखुट है, गुरमुख निभ है नाल। ए मन मूलों भुलिया जस है पत गवाई, एहो जगत मोहे दूजै व्यापिया, गुरमती सच त्याय। हर की कीमत ना पवै, हर जस लिखन ना जाय, गुर कै शब्द मन तन रपै।

ई मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर सिउ केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग मह विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार नै मन हर गुण सदा रवन रहाउ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाही समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक।

पीता तुझह अराधी, दुख पी तुझह त्याई। जे भुख देता इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी,

चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड़ है पीत आई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ ना जाई जे तुद वाल रहे ता कोई किहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहू वरसे पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुए बहु खारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक का हुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस भावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निःफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुरे अपना सोया मन जागाई एक दान मंगे नानक वेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोलहै सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसै गुरसिख गुर देखण जाई सब दिन सरैण देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक अपाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई रैण दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्ति अघाई नानक का प्रभु पूर रहयो है जत कत तत गुसाई राग सूही महला चौथा।

गुर सलाहिए उठदिया पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हों ता के धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हों तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना किते उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस

दरबारा आस अंदेसा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास ज्यो जल बिन मीना कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लैहो नानक अरदासे पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन जीवन रूप अनूप दयाल।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाई है। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जम्मे लख वार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा। जिन मन बुठा आप जियो गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वर है। बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करनहार, तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सर्व मैं, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो, राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी।

दाथड़ी नित हृदय रखा संभाल पाम जलाई पंध तौ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुर की वै कृपाल किती

मन्यो आप बदानिया एक पूरी नदर निहाल देह दर्स रंग मानिया जय जिथे मन धीरी है किल विक मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे हुए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय सूही महला पंजवां सिमरत बेद पुराण पकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख न पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बीचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते बिन बूजे सब वाद जोनी भरमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसरनाही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मावन डोसड़े हऊ क्यों सहो रावण जाऊ जियो एक दू एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाउ जियो जिन्नी सखी सहो रावया ते अंबी छावड़ी एह जियो से गुण मानना आमनी हऊ कै जी दोस त्रेऊ जियो क्या गुण तेरे विथरा हऊ क्या क्या किन्ना तेरा नाउ जियो इकत ढोल ना अंबड़ा हऊ सद कुरबान तेरे जाऊ जियो सोइना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हऊ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कूंजा कुरनिया बग बिहठे आए जियो सा तन चली सोहरै क्या मुंह देसी अगे जाए जियो सुती सुती झाल थिया भुली वाकड़ी आस जियो तै सह नालो मुतियस दुखा कू त्रियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागनी मैं दुहागन काई रात जियो सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुदे अंतर हों सुख वसा तू अंतर सा बास जियो भाणे तखत वडाइया भाणे भीख उदास जियो भाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो भाणे भवजल लंघी है भाणे मंझ परियास जियो।

आए जियो, सोई दस पदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो, एहो मन तै कू देवसा, मैं मार्ग देव।

ज्ञान सोहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

पर घर जाही साज नराते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेख तिसै भाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूजे अंध बूढ़ो तंधली बिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुर महली घर अपने सो भरपुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला तां सुहेला पा जंत अनहद बीना गुर महली घर अपने सो भरपुर लीना कीता क्या साला ही है कर वेखै सोई तां की कीमत ना पवै जे लोचै कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप भुल ना भुले जय जयकार करह तुद भाव है गुर कै शब्द अमुले हीनो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत साई राग सूई संत महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोह लड़ा हर त्याहु गुरमुख हर फल पावहु गुरमुख फल पावहु हर नाम त्याहु जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुरे अपने विटोह जिन कार्य सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जापहु सुख फल हर जन पावहु नानक कह सुनो जन भाई सुख सोह लड़ा हर त्यावहु सुन हर गुण पीने सहज सुपाई गुरमत सहजे नाम त्याय जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पहु भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी तिने अन दिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुपाई जुग मह राम नाम निस्तारा गुरते उपजै शब्द विचारा गुर

हमारा, जुग मह राम नाम निस्तारा। साजन आए उठे घर माही, हर गुण गाव है तृप्त अगाही। हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए। दह दिस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम त्याए।

निवासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सोह दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई सूही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना कोई सदा सच सोई।

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हों मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, राव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए।

गुरमति घट चानन होआ। प्रब रब रहिया सब थाई राम, प्रब रब रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हउमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

शब्द रव हो, अन दिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावो नारी, अन दिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसिया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए, हर की अमृत बाणी, जिन मन वसिया से जन निस्तरे, घट घट शब्द सुमाणी, तेरे गुण गाव है सहज समाव है, शब्दे मेल मलाए, नानक सफल जन्म तिन केरा, जे सतगुर हर मार्ग पाए, संत संगत सियो मेल भया, हर हर नाम समाए राम, गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये, हर कै नाम लिव लाए राम, हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए, मनुआ रत्ता हर नाले, सुखदाता पाया मोह चकाया, अन दिन नाम संभाले, गुर शब्दे राता सहजे माता, नाम मन वसाए, नानक तिन घर सद ही सोहिला, जे सतगुर सेव समाए, बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दर जा।

सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम, हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल, गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा फिर।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए, अनदिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गवाए, गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती,

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत समाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ।

इकना मन आधारू राम, इकना मन आधारू सिरजनहारु, वडभागी गुर पाया, घट घट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे आनंद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म बिचारू, घट घटे सब

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा, हर हर आनंद पया दिन राती, नानक हर मीठ लगाए, गुर सेवन सतगुर दाता, हर हर नाम समाए, राग सूही महला चौथा, शंत कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर पुरख मलाए अवगण विकना, गुण रवा बलराम जियो, हर हर नाम ते आए,

परम गत पाई पंच मिले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे विन सतगुर मग ना पाया उजड़ पंथ भ्रमे गावारी खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सहज सुपाए आया लगन गणाए हिरदय धन ओ माहिया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो पत्ती वाचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल सिखाई।

प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, वाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

संत जना हर मेल हर पाया बड़ भागिया बलराम जीओ निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया फल।

हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूई संत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुपाए अन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रह लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए अन दिन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भये पवित शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हम मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाई नानक नाम परगासा अंतर रतन बीचारी गुरमुख नाम प्यारी हर नाम प्यारी शब्द निसतारी अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाई हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद के रे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज्य है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाईए सहज समाईए तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लए मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हम

अहंता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई काय ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चूटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई

राम सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावे मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया।

भगवानों निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिया भौजल तरिया जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानो नानक शरण पया।

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम।

निर्जनहारा जिसते खाली कोई नाहीं, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपुरा, नानक सद बलिहारी। संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित,

मूर्ख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याय सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हौ ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी वछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा भज जगदीसरै।

तुम गौहर हत गहर गंभीरा तुम पेर हम बहरिया राम तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे हौ इतनी कलहरिया राम हौ किस नाही एको तू है आपे आप सुजाना अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा सर्ब रंग रसमाना चरण सरनी दास दासी मन मौल तन हरिया नानक था।

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर स्यों मन।

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया ही राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाई राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अलपूर।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिया है अविनाशी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुआ कटिया काल की फांसी राम कटिया जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त ते

तुम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी भला संजोग मूर्त पल साचा।

सगली तपत बनासी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच धर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा त्याई, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल महील सोई।

प्रभु परसे हर राया राम, मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वाधाइया करी नदर स्वामी सुखागामी, हलत पलत सुवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया सूही महला पंजवां, पै सागरू पै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम। बोह थड़ा हर चरण अरादे मिल सतगुर पार लंघाए राम, गुर शब्दी तरिये बहुड़ ना मरिये चूकै आवन जाना, जो किश करे सोई भल मानो तां मन सहज समाना, दुख ना भूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरनी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाए, संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आपनड़ा मन आगे धरिया सर्बस ठाकुर दीने राम, कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई, अणद बनोद सिमरहु प्रभ साचा विछड़ कबहू ना जाई, सावड़ भागन सदा सुहागन राम नाम गुण कीने, कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने, आनंद बनोद भये नित सखिए मंगल सदा हमारे राम, आप नड़े प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम, सहज सुभाए भये कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उर तारिया, मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी, गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम, जप एक प्रभु अनेक रविया सर्ब मंडल छाया, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया, जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए, पेख दर्शन नानक बिगसे आप लए मलाए, सूही महला पंजवां अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम, करते आप वसाया सर्ब सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सोहाया, कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम अरादह कटिए जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभ अवनासी हर हर नाम त्याए, सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारे सतगुर पूरे नानक सद बल जासी, दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम, आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला, दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई,
ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज भगत पाव भंजन अनहद वाजे धुनिए राम। अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नाम अराध है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाईऐ जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद।

ज्ञान की जय। बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पीजै। दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी, पेख दर्शन जीजै। राग सूही महला पंजवां, शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिट बो

अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले, घट घट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पवज

प्राण अधारू गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारू मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दो

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

लाल हुआ रसना रती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार आवन जाना विसर गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हऊ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मरिया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल मेहदियां सेती अग जलाहे जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावै जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया नामै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप वाड़िया लग पए गावारी जिन किए तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय।

मोल रस भोजन भाव करे तन मन सौंपे कंत को तौ नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले धन किया शिंगार सीजै कंत ना आयो इवें भया विकार महला तीजा धन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए पौड़ी भै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजै पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग स्यों हों मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर।

पुरख सजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातियां दोए भा चढ़ी अस होर बाहर धोती तू मड़ी अंदर वेसने कोर साध भले अनातियां चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग तंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावैनू सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करहे विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख

मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए रहाव। काकै करवै रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया रहाव। करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराई गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी। एक ना थाक समाया।

जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जान पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

तह की सार सुहागण जान, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जान।

बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रवदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जानहु त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम बड़े जल जासी ढोला।

रहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

अलख अपेव रहाउ, माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक को नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज त्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै, खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाउ, मेरा प्रभ बिसरे हो मरूं दुखाली, सास ग्रास जपों अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जानी गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिऊ, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देई लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी,

हे जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है मन मुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाली तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाणी से मन मुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वस्से मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाउ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म होए सो सतगुर पाए अन दिन लागे सहज ध्याना रहाउ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभमाना जब अपनी जोत खिंच है तू स्वामी तब कोई करो दिखा विखियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी नदाना ज्यो आप चलाए तिवें कोई चाल है ज्यो हर भावै भगवाना।

आए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे निदाना मलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावह आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हौ तिन बलिहारै जिन हर मन वसाई हर जन को मिलिया सुख पाईऐ हर गुण गावै सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे क्याए हर जीव आप वसै मन आए आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेलै मेल मलाई गुरमुख राते शब्द रंगाए निज कर वासा हर गुण गाए रंग चलूलै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरै साच समाए अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा मिलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हो मैं माया शब्द जलाई डर साचै गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर न काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरण को सम सर वेखै बहुड़ ना मरे ना जम पेखै घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावै एको नाम इस जुग में वडे आई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तह रहया समाई।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरियै बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावै पार। रहाउ पवन किलारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल शिंगार करे नहीं पावे, जहां हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय। रहाव सबनी थाई लव आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघन हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जितै कितै दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बलावल महला पंजवा। सुख नदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण।

प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार

न पावा। वडभागी से कांडिय है प्यारी, संत संगत जिन्ना वासु, अमृत नाम अराधी है निर्मल, मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटी है प्यारी, चूकै जम की काणी, तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाणी। पूज अपार बे अंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावते उधर है सुनते उधर है, बिनस है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्द कौतारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवा, बिखे बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी ना होवत जियो। मान महत ना सकते ही काई, साधा दासी थियो, नानक से दर सोभावंते, जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सखिए। अंत तज जावत माया, रस भोगण अत रूप रस माते, इन संग सूख न पाया। धन धन हर साध जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया, जाए बसो वड भागनी सखिए। संता संग समाइए, तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै, चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना, निश्चल सरनी पाईए। प्रेम बिछोहो ना मोह ब्यापै, नानक हर एक तिहाईए। दृष्ट धार मन बेदिया प्यारी, रतड़े सहज सुपाए, सेज सुहावी संग मिल प्रीतम, आनंद मंगल गुण गाय। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छ पजाए, नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया,

ना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुरु आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहा पकर सतगुर निस्तारा, बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमल सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरे आंगन रहाऊ, अनक जुगत कर बहुत विचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा ले मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहे आप प्रभ सब मह आपी, हर जप रसना दुख ना व्यापी रहाऊ, तिखा भूख बहु तपत व्यापिया, शीतल पये हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मन त्रिपताना

मिलै निस्तरीय। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय महचीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना।

मन तन निर्मल पाप जल खीना कहो नानक प्रभ भये परसीना मिलावल महला पंजवा सगल मनोरथ पाई है मीता चरण कमल स्यों लाई है चीता हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत जलन बुझै हर हर गुण गावत रहाउ सफल जन्म होवत बड़ भागी साध संग रामह लिव लागी मत पत धन सुख सहज आनंदा एक निमुख न विसरहु परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी भणत नानक सरन प्रभ तेरी बलावल महला पंजवा मोहे निर्गुण सब गुणै बिहुना दया तार अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभ घर मह आया रहाउ भगत वचल पै काटन हारी संसार सागर अब उतरे पारी पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेखिया पार ब्रह्म सो नैन उपेखिया साध संग प्रगटे नारायण नानक दास सब दुख पलायन बलावल महला पंजवा कवन जानै प्रभ तुमरी सेवा प्रभ अवनासी अलख अपेवा गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीर।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव, सगल सरंजाम करे प्रभ आपी। भय मनोरथ सो प्रभ जापी, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी भई सिमर सिमर बेधाता, साध संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुरे आणिया, बिलावल महला पंजवां। सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव, हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खवार साख नर थीवे, राम नाम होआ रखवारा। चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे। मृतक फास गले सिर पैरी, कहो नानक जपह जन नाम। ताके निकट न आवे जाम, राग बुलावल महला पंजवां। कर चौथा दुपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। हर नानक बिसर न काहू बेरे, बिलावल महला पंजवां। चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव, ताप पाप संताप बनासे। हर सिमरत किल विख सब नासे, आनंद करहु मिल सुंदर नारी। गुर नानक मेरी पैज सुवारी, बिलावल महला पंजवां। ममता मोह त्रोह मद माता, बंधन बांधिया अत बिकराल। दिन दिन सिजत बकार करत औद, फाही फाता जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागर अत भारी। उधरहु साधु संगर वाला रहाव, प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी। जियो पिंड सब तुमरा माल, भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर। नानक के प्रभ सदा कृपाल, बिलावल महला पंजवां। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिरद सम्हारिया। साध जना हुए कृपाला, बिगसे सब परवारिया। कारज सतगुर आप सुवारिया, वड्डी आरजा हर गोबिंद की। सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव, वण तिण त्रे भवन हरिया होए। सगले जी साधारिया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूर्ण इच्छ पुजारिया, बिलावल महला पंजवां। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत काटे सो काल रहाव। साध संग भजियै गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल। बलावल महला पंजवा। मन मैं सिंच हो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ। रज रज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम हृद माहि त्याई। नानक गुर पूरे सरनाई, जिने अपने नाम की पैज रखाई। बलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर घर बार रहाओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिसे आगे ही मारे करतार। नानक दास तां की सरनाई, जा को शब्द अखंड अपार। बलावल महला पंजवा। ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन अरोग। गुण गावो नित राम के, एह अवखद जोग। आए बसो घर देश मह, एह भले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे, लह गए बियोग। बलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊट सधारे शतरपत संतन कै ख्याल रहाओ। हम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल, बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल। सत बचन साधु कह, नित जपह गोपाल। सिमर सिमर नानक तरे, हर के रंग लाल। बलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख, पूरे गुरदीन। सदा सहाई संग प्रभ, अमृत गुण चीन रहाओ। जय जय कार जगतर मह, लोचह सब जिया। सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु, कछ बिघन ना थिया। जा का अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा बड़े आईया, नानक गुर पास। राग बलावल महला पंजवा। घर पंजवा चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू घर बार। बिन सतबार ना लाग गई, ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे, सत देख बीचार। सिद्ध साधक गिरही जोगी, ताज गए घर बार रहाओ। जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार। दृष्ट मान सब बिनसी है, क्या लग है गावार। कहां सुपाई मीत है, देख नैन पसार। एक चाले एक चाल सह, सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया, से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है, राख पैज मरार। बलावल महला पंजवा। लोकन कियां वड़ियाईया, वैसंतर पागों। ज्यो मिले प्यारा अपना, ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल हुए, तो भगती लागो। लपट रहे मन बासना, गुर मिल एह त्यागो रहाओ। करो बेनती अत घणी, एहो जियो हमागो। अर्थ आन सब वारिया, प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुरते छुटे, दुख अर रागो। हृदय परगास प्रगट भया, निसबासुर जागो। सरल सुहागन आया, जिस मस्तक भागो। कहो नानक तिन पाया, तन मन सीत लागो। बलावल महला पंजवा। लाल रंग तिस को लगा, जिसके वड भागा। मैला कदे ना होवई, नह लागे दागा। प्रभ पाया सुख दाईया, मिलिया सुख पाए।
सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया, हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए, क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की, नानक कुर्बाणी, बलावल महला पंजवां, राखो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारे, मान करो तुदे उपरे, मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे, रहाओ हम अवगन करहे असंख नीत, तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग, हे कर्म हमारे, तुम देव हो सब किश दया तार, हम अकिर्त कनारे, लाग परे तेरे दान स्यों, नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं, पाव काटन हारे, कहो नानक सरन दयाल गुर, देहो मुगद उधारे, बुलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए, प्रभ अपना त्याई है, जित सेवे है सुख होए कना, मन सोई गाइए, कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी, सब अवगुण हमा रहाओ, ज्यों तुम राखो हो त्यों रहा, अवर नहीं चारा, ने तरिया तार तेरिया, एक नाम अधारा, जो तुम करहो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समगरी तेरिया, सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा, जे ठाकुर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै, बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बुझै, बाद साध अहंकार मह, मरना नहीं सूझै, सतगुर से ओहो अपना, काहे फिर हो अभागे, देख कसुंबा रंगुला, काहे भूल लागे, रहाओ, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम करे, ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेन सोई हुआ, जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना, बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रिभुवन सूजिया, गुर पेट पनीता, महमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल पये कीता रहाओ, ऐसी भगत गोविंद की, पीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो, तिस अपै दान दीता, सिंह बलाई होए गयो, त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को, ते गनीत नीता,

असर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजै दान प्रभु संतन पागराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोह ते काट हो जम जाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। बलावल महला पंजवा, कीता लोड़ है सो कर है तुझ बिन कछ नाही। प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड़ जाहि। तुमरी कृपा ते शूती है बिनसै अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसापूर। जित जित लाव हो तित तित लग है सियानप सब जाली, जात कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना वडभागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवां गुण गाए। बलावल महला पंजवा, साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया तांते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहाव। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारै राखिया पय भ्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना। बलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल। राज मिलक सिकदारिया अग्नि मह जाल, संत जना का शोहरा इस चरणी लाग। माया तारी शत्रपत।

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया करन कारण।

ना जापै हर हर हर हर जापिए अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बुलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस भेटिया ताकै सुख प्रवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु न विसरे सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत त्रिपता सिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊं तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊं कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही। बिलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक तरिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवां। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुट्टे जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड। सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत तिस स्यो तेरा भेद। बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना। तन तन सरबसे अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवां। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच। पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिय नाम। कथा कीर्तन हर अत घना।

पंजवां खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिया प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवां जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हर आप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखू

पार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत अराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

आए भगतन की रास तोट ना आवै कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करहै सच थान सुहाया जप नानक नाम।

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवां दुपदे घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

करै राखिया अपनी करमया रहाउ बाहां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरभया बलावल महला पंजवां कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की यान। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित

पहाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई, रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई। बलावल महला पंजवा, अपने बाल के आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव सुख।

आप रोग मटाए जिवालियन जां कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल धारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

दाती मिल संगत हर गुण गाय रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्स रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाई सबहू तले तले सब ऊपर।

नमस्कार दंडौत वंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझ चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम है मेरे परवार है जो तुम करो सोई भल हमरे पेख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है बसारन रहाओ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख।

पूर रही दिन अर रात रहाओ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रतना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

सतगुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार रहाऊ। कर मस्तक धार बालक रख लीनो।

प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसेव अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पय जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पय उहां संग माते पोत पोत लपटाई।

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण आधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा।

बिन हर काम न आवत ही जा स्यो राच माच तुम लागी ओह मोहनी महावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिनह मैं जावत हे उर्ज रहियो इंद्री रस प्रेरियो बिकैठ गौरी खावत हे त्रिण को मंदर साज सुवारियो पावक तलै जरावत हे ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत हे दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोई रहियो मद मावत हे जाल पसार चोग बिसथारी पंखी ज्यों फहावत हे कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुरु पुरख त्यावत हे बिलावल महला पंजवां हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ सहज समायो गुर है बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया किनको सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारी वर्ण ना साकह एक रुमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिय किस कथन ना जाई जह जह देखा तह रह समाई रहाओ जह महाभयान दुख जम सुनिए तह मेरे प्रभ तू है सहाई शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई बिलावल महला पंजवां अगम रूप अबनासी करता पतत पवित एक निमुख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाई है कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिसकी लई लई फुन जाई है नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है बिलावल महला पंजवां संत सरन संत टहल करी धंद बंद अर सगल जंजारू अवर काज ते छूट परी रहाओ सूख सहज अर कनो अनंदा गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बन ना साको गुर पूरै मेरी उल्ट तरी पेखियो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहियो कृपा निद कहो नानक मेरी पूरी परी बिलावल महला पंजवां मन क्या कहता हों क्या कहता जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहाओ अनबोले को तुही पछान है जो जीन मह होता रे मन काए कहां लो डह कह जो पेखत ही संग सुनता ऐसो जान भये मन आनंद आन ना बियो करता कहो नानक गुर भय

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक उमा है, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा आप

करह करावह मू कर पावह। पेखत सुनक सदा संग हरे रहाउ, काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे।

द्वार मो बंद परे कहो नानक प्रभु होत दयारा गुर पेटै काढ़े बाहां परे बलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पय आनंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ ज्ञान पते सब पई स्या।

दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाउ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड परताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही

नाम जरा मरा कछु दुख न व्यापै आज्ञा दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परियै नित सरनी गुर ते पाईऐ एहो निदान जन्म मरण की कटियै फांसी साची।

जहां का किया सगल जहान मिलावन महला पंजवा मन ताने अंतर प्रभ आही हर गुण गावत परपकार नेता तिस रसना का मूल किस नाही रहाउ कुल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही बिलावल महला।

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरन समरथ अकथ सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राख है अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे।

भास्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरण समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वछल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधे नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुरसूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्ज हुए सग

आई। जन्म मरण के मिटे बिसूरे, भ्रम पै तरे छुटे पै जम के, घट घट एक रहया पर पूरे, नानक सरण परयो दुख भंजन, अंतर बाहर पेख हजूरे। बलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दुख नस्ते, कभो न हो वो दृष्ट अगोचर, जी कै संग बसे रहाओ, प्रीतम प्राण आधार स्वामी, पूर रहे प्रभ अंतर जामी, क्या गुण तेरे सार समारी, सास सास प्रभ तुझे चितारी, कृपा निध प्रभ दीन दयाला, जी जंत की करहो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जापी।

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया शरण परे नानक स्वामी की बाहा पकड़ प्रभ काड लया बिलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे झक मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहाउ गई ब्याद अपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को राखन हारा नानक दास सदा है चेरा बिलावल महला पंजवा गोविंद सिमर हुआ कल्याण मिटी अपाद भया सुख साच।

राखी पै भंजनी ऊपर करते मान भई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढे शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवै हर गुण है बखान बलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल कार्य सगल सवारी सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाउ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल कंठ लाए राखे जने अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल घर आए।

बनी रहाओ, तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, दिन सरैन मन माही बस्त है, तू कर कृपा प्रभे अपनी, बल बल जाओ श्याम सुंदर को, कथ कथा जा की बात सुनी, जन नानक दासन दास कहियत है।

अपार ब्रह्म परमेश्वर ता का हृदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जा का किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जा को तिन्ही पाया एहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान बलावन महला पंजवा राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाउ विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवा दुपदी घर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर खुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ धराउ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवा तुम समरथा कारण करन ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाउ जो जो कीनो सो तुम जानियो पेखियो ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन।

संतह चरण हमारो माथा, नैन दर्श तन तूर पर हो रहाओ। गुरु को शब्द मिरही अरे बासे, हर नामा मन संग धरो, तस्कर पंच नवार हो ठाकुर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करहो सोई पल मान, पावन दुबदा दूर टरहो। नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरहो। बलावल महला पंजवा, ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा, तुमरो

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतस पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जारो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेक दर्श स्वामी सुख सारो।
1: बिलावल महला पंजवा, आग है पाछ है कुशल भया, गुरपुर है पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ कीनी मया रहाओ। मन तन रव रहे हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, शांत सहज आनंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब हुए खया, गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बढ़ाई अचुत अबनासी, नानक उचरे हर की जया। बलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तर्म कैसी, करहु अनग्रहु पतत उदाहरण, राख स्वामी आप परोसे रहाओ। सिमरण नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसी, औद बिहावत अधिक महावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसी, शरण दुख भंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बलावल महला पंजवा।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताज अब मान अर चिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पीट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवां जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे तब

जोग जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावै मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावै कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै बलावल महला नौवा जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाउ तीर्थ करै व्रत फुन राखै नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानु साच कहत मैं जाको।

को दूजा देख कहो पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते त्रिपत ना आवे त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने।

सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरौ सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊ गुर आगै, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊ चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वच्छल ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगै जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया।

नानक हर गुर सरण समैया बलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया मिल मिन सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हौं खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना पावे बिन हर को दुइया कोई आनान मेरा प्रभु मलावे हौं तिस विट हो बाल बाल घुम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जां सत सत सत गुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवे प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया कर कर किरिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसवा कह कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पसाई आपे कोल कोल अंग लैया।

अष्टपदी कर बारो एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की उपमा जात ना कही ताजे आन शरण गही रहाओ प्रभ चरण कमल आपार हौ जाऊं सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे ताजे आन कतह ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उदार तै तरे सागर पार मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत तज गए पाप विकार हर मिले प्रभ निरंकार प्रभ पेखिए बिस्माद चख अनद पूर्ण साध नह डोलिए इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जां की महा बिखड़ी कार तां की मित न जाने कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवां प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम त्याए

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो मात पूतहि हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखई।

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ। दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने। क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे। बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़। तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किसे आखा दूर चौथ अपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा।

मूक शरीर सात समुंड भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अराधे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ किसमें मनुआ रहया लिबलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाऊ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबल।

वेका फलोहार किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़े लालच लपटे लपटाए छूटे गुरमुख साच कमाए द्वादश मुद्रा मन अवतूता एन सजागह कबह ना सूता जागत जागर

सब सोच संयम साच पछाण तेरा सतरवर समुंद किनारे अमृत मूल शिखर लिवतार डर डर मरे न बूढ़े कोए न डर बूढ़ मरे पत खोए डर मह घर घर मह डर जाने तख्त नवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बुझ हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

आप अपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

काय परमे फूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझे हमें मारे ता दर सूझे एक

कह कोई। साहिब की सेवक रह सरनाई, आपे बख्शे दे वड्याई, किसते ऊपर नाही कोए। कौन डरे, डर किसका हो।

कोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन भाई भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मो

आया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुरु ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुरत हर।

आया नाम अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया नाम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मलन मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक।

वास आओ सखी असी तिरका मंगल गावे तजमान सखी तजमान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

प्रिय नाथ, ज्यो जानो त्यो रखो, चतराई मोहे नाही, रजावो कह मुखो, नह चतर सुगर सजान बेती, मोहे निर्गुण गुण नहीं, नह रूप धूप ना नैन बंके, जह पावे तह रख तू ही, जय जय जय अम्पह सगल जाको, करना पत गत किन लखो,

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक भयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

यो सुख सागर प्रभ भेटे है, नानक सुखी होत एहो जी यो संत। सुख सागर प्रभ पाई है, जब होवे भागो राम। मानन मान वंजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातुरी, दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पवो सरनाई राम राय, फिर हुए सुहागो राम। सो प्रभ ताज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे ज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग करे, कहो कत ठहराइए राम। नानक भगत भाओ कर दयाल की, जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उच्चर है, बल गईये दोहचारन रसना राम। प्रभ भगत बछल न सेवही, काया काक ग्रसना राम। भ्रम मोही दुख ना जानही, कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना, बिष्टा क्रिम पसमा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे, होए मिल बैरागण राम। चंदन चीर सुगंध रसा, हम मैं बिख त्यागण राम। ईत ऊत नह डोलिय, हर सेवा जागण राम। नानक जिन प्रभ पाया अपना, सा अटल सुहागण राम। बलावल महला पंजवा, हर खोज हो वडभागी हो। मिल साधु संगे राम, गुण गोविंद

नानक प्रभ शरणागती जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम बड भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्याड़े अप

हरि उत्तम हर प्रभु गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणी जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए।

सतगुरु का दर्शन सफल है। जिहा को इच्छे तिहा फल पाई, गुर का शब्द अमृत है। सब तृष्णा भुख गवाई, हर रस पी संतोख हुआ। सच वस्या मन आई, सच त्याई अमरा पद।

नानक जिने अंदर सच है से जन शपहना किसे देश पाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा कहो नजर करे मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करता आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदय पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन उना पराया भला ना सुखाई। क्या हुए किस ही की चख मारी जा सच्चे स्यों बन आई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई सब चख चख।

फित किया है। सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है, सिर निंदक शाही जन नानक सच हरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा, पूरे भाग सतगुर पाई है, जे हर प्रभ बख्श करे।

निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किछ हर करावे सो ओए कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले।

हर कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान न लागे दुख विच कार कमावनी दुख वरतै दुख आगे करमी सतगुर भेटी ता सच नाम लिव लागे नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम भउ भागे। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाम मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भणत नानक सुनो जन भाई सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दूजे पाए सूते कबहु ना जाग है माया मोह प्यार नाम ना चेत है शब्द ना विचार है इहो मनमुख का विचार हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहु भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास लए वेम

आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे

हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी अंतर निर्मल नाव। अन दिन जागे कदे ना सोए सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोले अमृत बाणी अन दिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सुंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी सो गुर हर धन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवे ता कोई किहो मंग लए। अकै कोई किहो देवाए इहो हर धन जोर कीता किसै नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे तिसका मुंह।

नारायण का अन्न, पांच चोर तिना कर मोहन, हम मैं अंदर सन, साकत मुठे दुर्मति हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत भरम लुटाया देख सियो रचह रचन, दुष्टा से ती पिरहड़ी जान सियो वाद करन, नानक साकत नरक मह जम बदे दुख सहन, पै किरत कमाम दे जिव राख है तिवै रहन, महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया ताणन ताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस, हिरदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस, हर दासां का दास हुए परम पदार्थ तिस, नानक मन तन जिस प्रभ वसै हम सद कुर्बान है तिस, जिनको पूर्व लिखिया रास संत जनास्यो तिस, पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मह कट कट मुख भणिया, बहुत वड्याईया साहिब है नह जाही गनिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया, नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बनिया।

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुर बख्श लई।

राजा परजा सम कर मारे ऐसो काल बडानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

आप ना बौरा राम कियो बौरा सतगुर जार गयो भ्रम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम भूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक जाने अब है ना माता सो कबो ना माता कह कबीर रामे रंग राता बलावल ग्रह ताज बन खंड जाई है चुन खाइए कंदा अजो बिकार ना छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पवजल निद पारी

जाई, अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई, जरा जीवन जो बन गया, किश किया ना नीका, एहो जियरा निर्मूल को, कौडी लाग मीका, कहो कबीर मेरे मा

राम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतहां लै उदरियो बलावल को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहाओ तेरो जन हुए सोए कत डोले तीन भवन पर साजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको त्रू प्रहलाद नवाजा बलावल राख ले हो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हौ अभमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्ह नवाज साज हम किए तिसे बसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कही ओहो सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत काल हो जम की खबरी बलावल धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल कवार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस।

होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात्र।

के कारण एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नासै सिंह सरन कत जाइए जो जम्बुक ग्रासै रहाउ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

ऐसी मेरे सतगुर बूज बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर निःफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हरि ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसार के कटम मित्र भाई दीसह मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मलासा। जित दिन उनका सुआव होए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा। इसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रतना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना। शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओह उत्तम संत भयो बड बडना। किस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओह कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख।

जो हर जन नीच जात सेवकान गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तह वरत जिहा हर कराए तिहा को करइए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लइए मेरे मन हर जप हर नित पड़इए हर बिन को मार जवाल ना साके ता मेरे मन कायत कड़इए रहाउ हर परपंच किया सब करता विच आपे अपनी जोत तरइए हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखइए हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरइए निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्ब सुख पइए जिस दे वस सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा धिआइए जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा धिआए तू तुद ले छडइए गोंड महला चौथा।

ताबीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावहो, हर दर्शन शांत शरीर। शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाओ। सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता। ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता। भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता। निर्गुण करता सरगुण करता, गुरु प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई। तू उर्ज रहो संपाए ले, पग धार है सास लेख लै। तो उदर है हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले। अपने रह

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओहो मूठो मूड़ लभाए ले। तू हुआ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओहो कृपाल दीन दुख भंजन,

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जाके परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जाको है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

सेवक की पूरन का हाल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खोवे सात जना पग मल मल धोवे पंच पूत जने एक माए उत्पुज खेल कर जगत व्याए तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छाए जिसके सेतन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब होए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा काय अंतर जामी।

पातार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन हर गुण रमत नाही जम पंथ महाबीचार पंच दूत मंथ तो सरनाई पूर्ण नाथ जंत अपने को दीजह हाथ रहाओ सिमरत शास्त्र।

गुण महला पंजवां संत का लिया तर्त बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभात संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा तिसका पतन होए जिस कौ राख सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक कौ उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवां नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहि आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शिंद नारायण की

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जां को राखे रखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ में अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपै निरंकार।

जाए, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

जागै, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच वापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावै जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां।

उमराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जा

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जान उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभिमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा। कहो कबीर शूशा घट बोले भरिया हुए सो कबहू ना डोले। गोंड नरु मरै नर काम न आवे पशु मरै दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो

राग गुण बाणी रविदास जियो की घर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण जप मुकंद मस्तक निशान सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल धन लादी एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जुग तार उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीट दास कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहू की गोंड जे हो अठ सठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करे निंद सब बिरथा जावै साध का निंदक कैसे तरे सर पर जानहु नरक ही परे रहाव जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्पै नार शिंगार समेत सगली सिमरत सर्वनी सुने करे निंद कवने नहीं गुने जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे अपना बिगार बिराना सौंडे करे निंद बहुजोनी हांडे निंदा कहां करो संसारा निंदक का प्रगट पाहारा निंदक सोद साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सधारिया जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना कोई नाम जपे जपमाली लागे तिसे त्याना अब ही कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले लोभी जियड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरन लखाए मंडल मह आए जीवन साजह माई एक चले हम देख है स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जे तू देव है अंते होए सखाई राम कली महला पहला सर्ब ज्योत तेरी पसर रही जह जह देखा तह नरहरी जीवन तलब नवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ जह पीतर घट पीतर बसिया बाहर काहे नाही तिनकी सार करे नित साहेब सदा चिंत मन माही आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्ब रहया भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाए अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेहगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वस है कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिये जीवत्या नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेसा दोए पट जड़ी माया जल खाई पानी कर बांधिया सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत ना जानिया तुम सर नाही अवर हरे ऊंचा नहीं कहना मन मह रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही
क्यों कर एक कह आसा भीतर रह नरासा तो नानक एक मिले इन बिद सागर तरी है जीवत्या इयों मरी है रहाओ दूजा राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोड़ी मंगन कह ताई भीख्या नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाउ पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरुष बहुत तेरे जे तिन मिला ता कीरत आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करे राम कली महला पहला सुनमा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नह डोले ऐसी जुगत जोग कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे सो अवतूत ऐसी मत पावे अहंस सुन समाध समावे रहाउ भिख्या पाए भगत पै चले हुए सो तृप्त संतोख अमुले।

सुख होई। जो इच्छो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई। जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना। जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाऊ सुर्ग पवित्रा मित पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर सकती जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहा निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को

भरपूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत ना आवस दूजी बातां सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरन ना साकों जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही।

जिहवा तुन अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घुंघर साजा राम को निरतकारी पेखै पेखन हार दयाला जेता साज शिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पंच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चंद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक है पीतर साथे भिन्न भिन्न हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत होऐ दिन राती कट कट वाजै तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचै जिस गुर भेटै पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाले नारदी नरहर जान हदूरे पुंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत।

कोई बाछ पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवां पवन मह पवन समाया ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया करता।

यो जपया नाथ दिन रह नाई, हुण पाया गुरु गोसाई रहाओ दूजा। राम कली महला पंजवां, करन करावन सोई आन ना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख किनै विरलै दीठा। रहाउ निर्मल जोत अमृत हर नाम, पीवत अमर भये ने काम। तन मन सी तल अग्न निवारी, अनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर किरपा ते नीच निवाजिया। फूल कुवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर

सर्व प्रतिपाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुखते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूर्ण रहत अपदेश करे कर लोक दरडावे अपना कहया आपना कमावे।

अहंकार, जिसे सहाई होए भगवान, अनक जतन उआ कै सरंजाम रहाउ, करता राखे कीता कौन, कीरी जीतो सगला भवन, बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण, बल बल जाइए ता के चरण, तिन्ही किया जप तप ध्यान,

सहज समाध तुन गहर गंभीरा सदा मुक्तता के पूरे काम जहाँ कर दे वसै हर नाम सगल सुख।

बीज मंत्र हर कीर्तन गाऊ, आगे मिली न थावे थाऊ, गुरपुरे की चरनी लाग, जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वास्ते, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, ताशू तह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा हुए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावै जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान।

जस हृदय वसाई, नानक ते जने उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा, गौ कर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओ चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उदार। रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओ सेवक सेवा करे।

वड्डे पाग होवै तो पाइय बिन जेवा क्या जाने स्वाद रहाउ। अठ दस भेद सुने कह डोरा कोट परगास ना दिसै अंधेरा। पशु परीत घास संग रचै जिस नहीं बुझावै सो कित बिद बुझै। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अप

साध कै संग मन तन रातो हर कै रंग राखे राखन हार दयाल ना किस सेवा ना किस काल कर कृपा प्रभ कीनी दया बूढ़त दुख मह काड लया सुन सुन उपजियो मन मह चाओ आठ पहर हर के गुण गाओ गावत गावत परम

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी कूड़

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपट्यो भ्रम गिरह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव गण में देखो सगल विचार नाम बिना को सके ना तार सगल अपाव ना चाले संग पवजल तरिय प्रभ कै रंग देही धोए न उतरे मैल हौमै व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद।

नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवां तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुद बिन दूजा नाही ठाउ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगाह पावो ठाउ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिन सह राचे हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पवो भागा निरपो मन बसे अमृत नाम रसना नित जपे कोट जन्म के काटे पाहे पाया लाभ सच्चा धन लाहे टूट ना आवे अखुट भंडार नानक भगत सोह है।

का पूता, हर भगता हवालै होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कछ तोट ना आवे, अंत नहीं हर पा।

केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख

नहीं जाने भेद अवतार न जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गत आप जाने सुन सुन अवर बखाने रहाऊ संकरा नहीं जाने भेव खोज तहारे देव देवियां नहीं जाने मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरे आपे मेल एक परमे एक भगती लाए।

मत सार जित हर सुमरीजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुरु।

नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दलाब दे सवार जाहि न दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप डैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै।

किसका सब कोए, किसह अराध सदा सुख होए, काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान ले हो, बिन माने रल हो वह छेह, किसका पाणा।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

बूटा सूके काष्ट हरे चलूल ऊचे थल फूले कमल अनूप अग्न नवारी सत गुर देव सेव के अपनी लायो सेव किरत कणा का करे उदार प्रभ मेरा है सदा दयार संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक सरनाई राम कली महला पंजवा पंच सिंह राखे प्रभ मार दस बिगियाड़ी लई निवार तीन अवर्त की चूकी घेर साध संग चूके पै फेर सिमर सिमर जीवा गोविंद कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए त्रिण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रगट

किंत जाल काल चक्र पेल, हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाऊ, ऊणे काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे बिकार जियरे कैताई, गाफल संग न तसु आ जाई, तरत तो हो अनक शाल जाने, कौडी कौडी को खाक सिर छाने, जिन दिया तिसैना चेतै मूल, मिथ्या लोभ न उतरै सूल, पार ब्रह्म जब पए दयाल, इह मन होआ सादर वाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै

संग सो पव जल तरै अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उजल साचै दरबारे आनंद करहो तज सगल बिकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समर्थ हर जियो आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिखैठ गौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विभूता, गर्भ जून में किरत पया, उर्ब कमाणी छोड़ह नाही, जमदूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा, कृष्ण न बूझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बनासी महाखया, जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्म मया, राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाव, दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी धूर काटे जम जाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतत उदाहरण

बिन से अभमान एक तिहाई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास काट काट रव रहया गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाव राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाई आवागौन मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल मह होए निवास संत संगत मह होए उदार नानक भवजन उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरादो साचा सोए जा की सरन सदा सुख होए।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओट ले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल कौ अंत काल में नारायण सुध आई जां गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम।

जाते दुर्मत सगल बनासे राम भगत मन पीजे रहाउ। मन माया मह उर्ज रहियो है बूझे नह

बासुर मह निमक एक उर तार है, जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले, छिन छिन औध कटे निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ। तरनापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे। जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार, होए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाऊ। कितै देश न आया सुनिए तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तह नाही महल उसार न बैठा।

तत् परुता जग सूता मारे आवे जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द बजे दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहिया निर्वाणी सुन समाद सहज मन राती।

यह सैला बिन हर राती मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ।

सोजी होए गणत गणिय सहसा दुख जीय गुर की शरण पवै सुख थीय कार्य पराध शरण हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर शरण ना आईय ब्रह्म ना पाईय परम भलाईय जन्म मर आईय जमदर बहंत हो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहावे है दुखदा राते महल ना पावे है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन अपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख विरली।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

दर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुवीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही है सो प्रभ ते होई, जुगा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर,

साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल। एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादुर लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा, कर्म मिले पावे सच नाउ, तुम शरणागत रहो स्वभाव, तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाउ, हौ मैं गर्भ जाए मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत वी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजे कट कट जोत तुम्हारी पर पंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपरी

शब्द विचारी आपे बख्शे मेल मलाए नानक शरण तुम्हारी। राम कली महला तीजा अष्टपदियां।

जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग न होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी।

भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वसिया घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औ गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजन पार उतारी बिन हर साचे को पार न पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया बिन हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है होर फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान बिचारी हम मैं तृष्णा मारी।

अहंकारी जिचर अंदर सास तिचर सेवा कीचै जाए मिलिया राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से ही जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से ही मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा।

जो किस करना सो कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सिरट अपाए सिर सिर तंदै लाई, तिसह सरेवो तां सुख पावहु सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना जाई, आपे मारज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम।

0: काहू बिहावै जोग तप पूजा,
1: काहू रोग सोग परमीजा,
0: काहू पवन धार जात बिहाए, संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रहन चालत, काहू बिहावै सो पिड़ मालत, काहू बिहावै बाल पढ़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नट नाटक निरते, काहू बिहावै जिया एह हिरते, काहू बिहावै राज मह डरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जी।

मटंत धन बिगसै ग्रह आवत कंत लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वन्या वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

मन अंधेर बंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई एक शब्द लिवला।

आप संभाली आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधिया भवजन पार पवाई बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभव कल।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु।

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संत हो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संत हो आद जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संत हो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संत हो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संत हो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

संतोह शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पांच शब्द तित कर सा भाग है शब्द वाजे कला जित कर तारिया पांच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी बेन माणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई कृपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारी।

विचारिया एक भरम भूले फिर दह दिस एक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आवहु संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी कथ केरी कित द्वारे पाई है।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया।

भगत हां तेरी विखव मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्यो हो तिखी वालो हो निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया

है। कित संयम धोता जाय, मन तो वो हो शब्द लागो हो, हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा।

जन्म जूऐ हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म रतन

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो हो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते गे मुख होवै, बिन सत

करह रसना कहया कछु ना जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकते आपे उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होए मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस स्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप बीचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुतिया रैन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे।

वरदाता जे अग्न में है आहार पहुंचावी उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिवलावी अपनी लिवे आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर में है तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करता खेल रचाया जां तिस पाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसर मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाए किसे विटह रहे लोक बिललाई ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाई।

मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर तेरा आस जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा कटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आप

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत कितै, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे बदृष्ट हो।

जित सुनी मन तन हरिया हुआ रस नहा रस समाणी सच अलख वडाणी तां की गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो।

भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल तिहो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जन है केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे। सतगुरु प्रतख होंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया। हर गुरह पाणा दी बड़ियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होवंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा

सुगड सुजान। सुगड सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिनह त्याया, सगल तिसै का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसै दी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याईए सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणी।

हर हर ध्याए मना खिन ना विसारी है, राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है, उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो, जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद बिचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चतारी है, चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिल्क भंडार नाम अनंत धरा, नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा, किल विख हरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा, बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा, गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने, देख चलत दयाल सुन भगत बखाने, जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा, सर्ब जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा, साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने, बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने, मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया, जल ने बुझाई शांति आई मिले चिरी बछुनिया, आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया, राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद, नित उठ गाइय संतन कै किल विख सब दुख बनासन, हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अम्यो पीजै, रैन दिनस अराधिय जोग दान अनेक क्रिया, लग चरण कमल है सादी है, पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै, सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम, अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम, सुख निदान मिलया दुख हरिया किरपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया, हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी किरपा पूरा सतगुर पाया, मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम, दयाल दुख हर सरन दाता सगल दुख निवारनो, मोह सोग बकार बिखड़े जपत नाम उदारनो, सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा, राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरह एको नाम त्याए राम त्या

सदा अन्न दिन जागा, जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो, सदा सदा पल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान, नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान, संत सो स्वामी प्रभ रखको, अंचल तांकै लाग जियो। भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो, एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै, साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै, जन्म मरण बेकार छूटे, फिर ना लागै दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ, संत सगल इच मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो। अंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा, आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी, हर एक त्यावो, सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा, रुती सलोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कर बंदन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर, किलविख काटन भय हरन, सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो, रुती महा मूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन तेजन, जिन्नी एक मन त्याया, सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्ब पापा हंत जियो। बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। सलोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सा तुद भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत। संत रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो। कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमुल्या, वड भाग पाया दुख गवाया, भई पूर्ण आस जियो। बिनवंत नानक शरण तेरी, मिति जम की त्रास जियो। सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया, नानक कर्म है लेख, जो पाणे से मेलिया, विछोड़े पी आप, नानक प्रभ शरनागति, जाका वड प्रताप। संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी, जेठ अखाड़ काम जियो, प्रेम बशोह दहागनी, दृष्ट ना करी राम जियो। नह दृष्ट आवै मरत हावै, महा गर्भ मुठिया, जल बाज मच

होई देह सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साज नह जन्म जन्म के मीत चरनहां दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सहेलिया सावन भादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नवनिध ग्रह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह सिधर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर

है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार बिन मिल बे शांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साध शरनागति नानक आस पुजाय संत रोत शरद अडम्बरु असू कट के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत तब मिली है गुणतास जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिक बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक धार कृपा।

पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार ढोल शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो। श्लोक हर तन पाया सुहागनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बनी मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धर कंत जियो। श्लोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते उचे जानिय नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते टिलना मन ते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद कौ आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली।

वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रि पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित

जय रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आई जाए जुग चारी रहन कहन ते रह न कोई किस पह करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरुदेव पतमती लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संकटली प्रेम बलाई रली स्यों मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई

रथ आथ सैल नीच घर होए आथ देख निवै जिस दोए आथ होए ता मुग्ध सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

ज्यों कंचन सुहागा ढालै कस कसवटी सह सो ताऊ नदर सराफ बन्नी सचड़ाऊ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करतै करनी कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किस कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखै सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पी अंत मुए नहीं जानिया हिन मह मुए जा शब्द पछानिया अस्थर चीत मरन मन मानिया गुर किरपा ते नाम पछानिया गगन गंभीर गगन अंतर वास गुण गावै सुख सहज निवास गया न आवै आए न जाय गुर प्रसाद रह लिवलाय गगन अगम अनाथ अजूनी अस्थिर चीत समाध सुगुनी हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी घर दर फिर था की बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत धियां केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त ना हुआ केती नार वर एक संभाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दह दिस ढूंढ करै मैं पाया मेल भया सतगुरु मलाया गुरमुख गावै गुरमुख बोलै गुरमुख तोल तलावै तोलै गुरमुख आवै जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद बीचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावै पार चंचल चीत न रही ठाई चोरी मिर्ग अंगूरी खाई चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोई चित है एक तही सुख होए चित वसै राचै हर नाई मुक्त भया पत स्यों घर जाए सीजै दे खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जान बंधन काट मुक्त घर आण छाया शूशी जगत भुलाना

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा, जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस, चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद, जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा, चुर चुर चख माटी रल जा।

बूझै, आपे समझै आपे सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटै नेहो के बोलह सही, टूटै बाहां दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताय, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपणै, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपणै, निरपहु नाम बखान, डूंगर वास तिखा कणी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखै सब कोई, जय पावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोई, टंडोलत टूंडत हौं फिरी, तह तह पवन करार, पारे तह ते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौं बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाऊं, जिन नाम दिया तिस सेव सां, तिस बलिहारै जाऊं, जो असारे सो ढासी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर परसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना होग, आवन जानव गुची है, दुबदा व्यापै रोग, नाम मिहुने आदमी, कल्लर कंद ग्रंत, बिन नावै क्यों छूटी है।

प्रभु नानक कर संयोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नरंच।

फुन आए गए पछताहे लख चौरासी मेदनी कटै न वधै उताहे सेजन उभरे जिन हर पाया

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती।

राह गुरा पिहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण झुरमुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय पावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाय रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई।

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणै आपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हो मैं खपै खपाए सी बीजो वथ बेकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर ना सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िया शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे अन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भविय सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासु, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासु, सुन स्वामी अरदास हमारी।

මටාය අනහතරාති එහුමනලාය මනසාය සාශබ්ද ජලායි ගුරුමුඛ ජෝති නිරන්තර පායි ත්‍රෑ ගුණ මේටේ ඛායය සාර නානක තාරේ තාරණහාර ආද කෝ කවන විචාර කතියලේ සොන්න කහා කර වාසෝ ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले कट कट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले क्यों निरभउ घर जाइय सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बहराइय गुर कै शब्द हउमै बिख मारै ता निज कर होवै वासो जिन रच रचिया किस शब्द पछाणै नानक ताका दासो कहां ते आवे कहां एहो जावे कहां एहो रहे समाई एस शब्द को जो अर्थावे तिस गुर तिल ना कमाई क्यों तत्ते अवगत्ते पावे गुरमुख लगे प्यारू आपे सुरताय।

गत मित शब्दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वासलिया अकलपत मुंदरा गुर ज्ञान विचारियली कट कट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाई है।

जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किश सूजै अंतर

कहां मह जोगी परमाई सन्यासी से चार गुर कै शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे से वड भागी जिन्नी सच रखिया उर धार गुरमुख रतन लह लिवलाय गुरमुख परखै रतन सुभाय गुरमुख साची कार कमाय गुरमुख साचे मन पतियाय गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावे गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागे सहज ध्यान गुरमुख पावे दरगाह मान गुरमुख पौ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाय गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावे घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई।

अपना पुन घट घट सुन का जाने पेव आद पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवें पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज पाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाई क्यों तत ना बूझे चोटा खाए जम दरबाते कोई न राखे बिन शब्द ना ही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन मुख ना बुझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत ना चीने मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरह तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए।

सच लिव लागे कर नगरी मेल मलाई आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाई सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाई शब्द गुरु भव सागर तरियै इत उत एको जानै जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणै त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोलै तत बिरोलै चीनै अलाखे अपारू त्रै गुण मेटै शब्द वसाई ता मन चूकै अहंकारू।

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अलि पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृपता सह नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होए तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे इहो मन निश्चल हृदय बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सपाखै सच रपै रंग कबहू ना जावै जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठै रहता नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल असथंभ ना होतो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना होतो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी।

जिस वसिया मन माही महला तीजा। मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए, दुख विच जमे दुख मरे, हूं मैं करत विहाय। आवन जान ना सुजई, अंधा अंध कमाई, जो देवे तिसे ना जानई, दिते कौ लपटाई। नानक पूर्व लिखिया कमावना, अवर ना करना जाई। महला तीजा, सतगुर मिले सदा सुख, जिसनो आपे मेले सोए, सुख है इहो विवेक है, अंतर निर्मल होए। अज्ञान का भ्रम कटी है,

ना कोई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हऊ मैं छड्डै ना कोई। गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करे पौड़ी। दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना दूजह बिचारा। सब किश तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै माया नु फिरै तपा सदावै। परमे भूला सब तीर्थ गह ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा सो तपा जे इहो तप काले सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा इहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी। रात दिन स उपायन संसार की वर्तन गुरमति घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिण। सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन। शब्दे ही सोजी पई सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए नायाखियन। जिनके चित में भरम किस दै दितै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद। ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन। जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन। पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन पौड़ी। अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव। घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सच्चो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

सतगुर मिले तन आम दड़ाई सब किल विख कटन हार नाम जपे नामो अरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवन दाता नाही किस आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथों हो मैं जाई है रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है घट अंतर अमृत रखे उन गुरमुख किसै प्याई सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुर भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कसत कमाम दे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नगरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती एक कूड़ को सत लायन मन मुख वे गूती गुरमुख सदा त्याई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है इन वात सपीती नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही गुर दीखिया घर देवन जाहि स्त्री पुरखै खटिया भाऊ भावै आवो भावै जाओ सास्त वेद न मानै कोई आपो आपै पूजा होए काजी होए कै बह न्याय फेरे तस्बी करे खुदाई बड्डी लै कै हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाई तुरक मंत्र कन हृदय समाहि लोक महावह चाड़ी खाए चौका दे कै सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोई जोगी गिरि जटा बेपूत आगे पाछे रोवह पूत जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सिर शाही पाई।

है घर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पढ़ गल पावे, सूत पाए करे बुरियाई, नाता धूता थाए ना पाई, मुसलमान करे वडियाई, बिन गुर पीरै को थाए ना पाई, राह दसाए उथे को जाए, करनी बाजो किस्त ना पाई, जोगी कै घर जुगत दसाई।

सो जाए सियाने, होर पकड़ हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए, करनी बाजो तरे ना कोई सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरह, ना सत मूंड मडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहु चरह, जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले बढ़ाई, जिस घट भीतर शब्द रवे, सब घट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला, सो गृही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे, पुन दान का करे शरीर, सो गृही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप।

संताप औ हट पट्टन मह भीख्या करै सो अवतूती शिवपुर चढ़ै बोलै गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े ना कंद बोलै गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना इस पाखंडी जरा न मरना।

क्यों जीवै जुग कन पड़ाए क्या खाजै भुगत आसत नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आऊ।

आई पौड़ी हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी है कर माहे बधाता मनमुख हर मंदिर की सार ना जा।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूहु केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी करना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहया सब आपै। हर की कीमत ना पवै किस कहन ना जापै, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापै। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपै,

सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहे, अंधे से ई नानका खसम हो कुथे जाहे। महला दूजा साहेब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई। जितै सो वस्त्र ना जापई आपे वरतौ जान, नानक गाहक क्यों लई सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी काया अंदर गण कोट है सब दे संतर देसा, आपे तारी लाइयन सब मह परवेसा। आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटिएसा। सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहार देहु काम क्रोध दोए खेता।

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर बरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर प्रगास घट चानना।

नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए महला तीजा। ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बफड़ी जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन। सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहे आसरबत नानक बल जाई, सलोक महला पहला सरवर हंस तुरे ही मेला। खसमै वै पाणा सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना बगला काग ना रही सरवर।

प्रभ सेविया तिस जेवड अवर न कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिय जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिय कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हों तिस कुरबाणीए गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै

जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हा जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौं बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मन मुखा केरी दोस्ती।

नदर झाक नौ निद नाम निदान गुर कै शब्द लाग किसे मिले संत खाक मस्तक जिसे भाग सलोक महला पंजवा हरनाखी कु सच वैन सुनाई जो तौ करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो छबीली फिर तैढा मन साधारण दुर्जन सेती निहुर चायु।

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसा विच बैठा बग न बनी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जा हंस सभा विचार।

आई। जे आवै तुदे आहि सलोक महला पंजवा दूजा तिस ना बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिख्या रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक आरा

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाई पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कनावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीरथ नहाइ ना तू आवह वस धरती ताई है ना तू आवह वस कितै सियाणपै ना तू आवह वस बहुता दान दे सब को तेरा वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा श्लोक।

अमृत रस खाएं। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मटाएं। महला पंजवा हुक्म उचलै हुक्मे रहै हुक्मे दुख सुख सम कर सहै हुक्मे नाम जपै दिन रात।

भोगा हरख आनंद हुक्मे जपै निरोधर गुरमंद हुक्मे आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावै गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो, सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए, मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना, प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजै, दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा, नानक नाम त्याई है। गुरपुरा मत दे, भाणे जप तप संयम। भाणे ही काढ ले, भाणे जोन पवाई है। भाणे बख्श करे, भाणे दुख सुख भोगी है। भाणे कर्म करे, भाणे मिट्टी साजक है। भाणे जोत तरे, भाणे

जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खाने दिनस रहन तेरा नाऊ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया सलोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौं तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवां सस वरायण नानक जीओ ससुरा वादी जेठो पौ पौलू है हबे भस पुणेंदे वतन जां मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारणो जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारनो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जानो।

सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रीताविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बनी सिंगार खसम जान राविया मिलिया आए संजोग जान तिस पाविया।

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजत पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भाग

अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर।

वरन्या तन सो तेरा थान जिथे तू उठा तन सो तेरे भगत जिन्नी सच तू डिठा जिसनो तेरी दया सलाहे सोए तुद जिस गुर भेटे ना।

दलाली सतगुरे आखै सच्चा करे सा बात हुवै दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होए जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवागौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान

मेलो गुर का शब्द गुण की नरी तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभ तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर पर सादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

बोलह पांडे दोजक पर है रहा आपने ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है तरवर एक अनंत डार साखा पोप पत्र रस भरिया हे अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी रहाउ पवर एक पोह परस बीदा बारह ले उर तरिया सोरह मदे पवन च कोरिया आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया धरती जल हर सो

भोगी जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनिद तरन तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा।

जाहि फलाई, जे सिमरन तुझ पूहै नाम आई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

फिर फल सेवर पाका मूर्ख मुग्द गवार हर भयो खांड रेत मह बिखरियो हस्ती चुनियो ना जाई कह कमीर कुल जात पा।

गुड़ी आकाश मदे परम यले पंच जनास्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन शादी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बशरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी राम गावो गो शब्द अतीत।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भदान दीजै राम नाम सर तउ ना पूजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजै हर का नाम नित नित है लीजै रहाउ गंगा जो गोदावर जाइय कुंभ जो केदार नाइय गोमती सहस गऊ दान कीजै कोट जो तीर्थ करै तन जो हिवाले।

जन हिरण हुए कैसी, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूट है, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ, हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कौरव दास सब है नहीं समझस, भूल

साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला जो जाने प्यो भेटै तास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला।

है हारे असुर नदी का बंद है मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सोन झर झरे जगन्नाथ स्यो गोष्ट करे चौमुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर संख कन गाजे दल

जप अहन सुनाम हरे, कोट कोट दुख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जप है आराध है, सेवक पाए खरे, किल बिख दुख गए सब नीकर, ज्यों पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे, पंच दुख असाध नगर में, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, किरपा किरपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जपियो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाउ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दुख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाय, गुर सतगुर संग सखे, ज्यों चंदन संग बसै निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे, हमरे अवगन बिखिया बिखै के, बहु बार बार निमखे, अवगन यारे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे, जिनको तुम हर राखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे, जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हर नखे, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीश्वर, हर त्यायो जन

पालक स्वामी हमरा कोह वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरेओ। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारेओ। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हौ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रभ धारो। हम सेव है तुम जन पगे।

काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावह हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौरे दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर पंचह हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आपते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

साध संग नानक परगासियो आन नाही रे बियो नत महला पंजवा जाको पई तुम्हारी धीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई।

अपना जन आपह आप उधारियो, आठ पैर जन कै संग बस्यो, मन ते नाही बसारियो रहाउ, वर्ण चिन्ह नाही किस पेखियो, दास का कुल ना बेचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सुवारियो, महाबिखम अग्न का सागर, तिस ते पार उतारियो, पेख पेख नानक बिगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहियो, कोट अपराध मिटह खिन पीतर, ताका दुख न रहियो रहाउ, खोजत खोजत पयो बैरागी, साधु संग लहियो, सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहियो, कहत मुकत सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो, नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी, रहाउ, अंचला गहायो जाने अपने को, मन बीतो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रास उपजियो, माया की जाली तोरी, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, आना पेखो होरी, नानक मेल लियो दास अपना, प्रीत ना कब

दीने बिनस्यो मूड़ अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

कह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन सम्हारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवै जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत।

हर अमृत सर नावहारी सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको मिल कलमल पाप उतारी रहाउ संगत का गुण बहुत अधिकाई पढ़ सुआगन के उधारी परसन परस भय कुबिजा को लै बैकुंठ सधारी अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी कर नारायण बोलारी मेरे ठाकुर कै मन

गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

पीका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

माने परतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

आप निस्तारी नाट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोको हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारी मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाव हो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कनहारे साकत को अमृत बहु सिंचो हो सब डाल फूल बिस्कारी ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै है पर उपकारी संतै संत मिलै मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तारे अवर ना काई मैं सत

ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाऊ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाईए बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम मैं रहो लागू।

रे नदान पतत पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण मह सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा एही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संत है माथ मोर नैन दर्श पेखो निस भोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बस है मेरे चीत संत आ गया मन है मीत मेरा कमल बिकसै संत डीत संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास।